FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्र

0: क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना में आइए सबसे पहले करें अपनी मातृभूमि को नमन इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में अभी हमने सुनी देश वंदना। आइए अब करें ईश वंदना राघव राज के गाय इस शिव भजन के साथ।

राघव राज की आवाज में अभी हमने सुना शिव भजन। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं अनूप चलूटा के स्वर में राम भजन।

आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रही हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आइए अब सुनते हैं पारंपरिक भजन चित्रा सिंह की आवाज में।

बन्नी सचदेवा और साथियों की आवाज़ में ये था कार्यक्रम आराधना का अंतिम भक्ति गीत। इस गीत के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:30

0: 20 मिनट हुए हैं। समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम खेती की बात का। इसमें आज जानकारी दी जाएगी कृषि मौसम आधारित सलाह और फसल सुरक्षा पर। जानकारी दे रही हैं चित्रलेखा तिवारी।
1: हमर किसान भाई मल्ला राम राम जय जोहार। संगवारी हुआ आप मन सुना था हमारे विशेष कार्यक्रम खेती के बाद। खेती के बाद में हम आज बात करबो कृषि मौसम आधारित सलाह और फसल के सुरक्षा। ए विषय में बदलत मौसम के कारण खेती में कई तरह के चुनौती के सामना हमर किसान भाई मन करते हैं। यदि हमर किसान भाई मन समय में मौसम के जानकारी लेवत रहें और तेकर बाद खेती किसानी के बूता ल करें त उत्पादन तो बढ़े ही और संगे संग नुकसान भी बहुत कम होही। काबर के आप मन ला पूर्वानुमान पहले ले रही भाई, जैसे कि आज अतका बेर से अतका बेर तक भारी वर्षा के संभावना है ता आप सावधान रही है ना मुही ला फोड़ दे रही हो, या जेकर खेत में जो मुही फूटे रही थे आप ला पता चल गया था ए दिन में पानी गिर रही है तो आप मुही ला बांध दे हो ताकि आपके खेत में पानी जितका आवश्यकता है उतका मिला है। ता मौसम आधारित जानकारी सबले अधिक आवश्यकता हवे और हमारे रेडियो के माध्यम ले तो रोज आप ला मौसम आधारित जानकारी देते रहते भाई। किसान संगी मन के खेत हर पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर रहते, तापमान वर्षा आर्द्रता हवा के गति जन फसल के वृद्धि और कीड़ा रोग के प्रकोप ला प्रभावित करते। सब के जानकारी मौसम के पूर्वानुमान के आधार में मिलत रहते और ये जानकारी के आधार में ही खेती के बूता ला आप मल्ला करना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है। तो सबसे पहले यदि आने वाला दिन में वर्षा के संभावना है तो खेत में जल निकासी के उचित व्यवस्था कर देवा ताकि पानी के जमाव न हो। धान हुआ है कि सोयाबीन हुआ है कि मक्का हुआ है या दलहनी फसल में अधिक पानी से जड़ ला नुकसान पहुँच जाते जलक जाते। और यदि मौसम विभाग द्वारा तेज हवा या आंधी तूफान के चेतावनी दिए जाते तो साग भाजी के फसल लगाए संगवारी मन या फलदार पौधा जो सहारा दे के खेत में रखे उर्वरक बीज या कृषि उपकरण है ना ओमन ला सब लाभ मन सुरक्षित स्थान में रख के सुरक्षित रख सका था भाई। किसान भाई मन बरसात के बाद वातावरण में नमी के बढ़ जाले कई फफूंद जनित रोग है जो तेजी से फैल जाते खेत में है कि नहीं, तो एकर बार फसल के नियमित निरीक्षण करा। पत्ती में धब्बा झुलसा रोग या सरे के लक्षण जैसे ही दिखाई देते कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार उचित दवाई के आपन प्रयोग करो। ऐ प्रकार ले अधिक तापमान और नमी के स्थिति में कीड़ा के प्रकोप भी बढ़ जाते और खेत में पीला चिपचिपा ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगा के कीड़ा के निगरानी आप मन कर सकत हो। और कीटनाशक के उपयोग तभी कराओ जब ओकर संख्या बहुत अधिक बढ़ गए या आप मतलब जब ओकर जनसंख्या बहुत बढ़ जाए तब। उर्वरक के प्रयोग भी मौसम ला ध्यान में रख के कराओ। खातू माटी आप डारा था तो जैसे ही मौसम आधारित आप मतलब जानकारी मिला थे ओकर अनुसार खातू माटी डालो। काबर के यदि बहुत पानी गिर गए जैसे भारी वर्षा के संभावना है और नाइट्रोजन युक्त तो यदि आप मन खातू के छिड़काव कर दे है तब फिर आपके खेत ला नुकसान हो जाही। धान ला या जो भी आप फसल लगाए है ओला यदि मौसम के जानकारी में आप लोग पता चला थे आज मौसम में भारी बारिश के संभावना है तो यदि आप खातू माटी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डाला था तो ओकर प्रयोग ला टाल देवा। काबर के पोषक तत्व जो रही थे ओहर ओह बुहा जाते और तहाँ ले फिर आप लोग फिर नुकसान हो जाए ओकर डाले नहीं डाले बराबर तो बारिश के रुक गए तेकर बाद आप मन आवश्यकता अनुसार उर्वरक डाला। पशुपालक किसान मन भी सावधानी रखा बरसात में। काबर के जो भी आप पशु के पालन करे हा चाहे बकरी हुआ है कि गरुआ हुआ है ओला सूखा और स्वच्छ स्थान उपलब्ध करावा साफ और स्वस्थ पानी पियावा। बरसात के मौसम में टीकाकरण और स्वास्थ्य के जांच समय समय में करावत रहा। तो किसान संगी मन देखा मोबाइल आजकल सबके हाथ में बड़का बड़का मोबाइल रहते तो मोबाइल हुआ है कि रेडियो हुआ है या टीवी हुआ है एकर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र से नियमित मौसम पूर्वानुमान आपन या तो खुदे निकाल सका था या तो फिर सुना तो रेडियो

0: वीडियो के माध्यम से आप मतलब जानकारी मिलत रही। तो कृषि सलाह अपना के खेती किसानी के बूता ला कराओ, एकर से लागत कम होते, जोखिम घटते और उत्पादन में बढ़ोतरी होते। ता किसान भाई हुआ याद रखाओ, मौसम आधारित खेती प्रबंधन और समय में फसल सुरक्षा के उपाय अपना के हम नुकसान कम कर सकन और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकत हन। त मौसम के जानकारी लेवत रहो, कृषि वैज्ञानिक मन के सलाह मानत रहो और सुरक्षित खेती करो। अही गोट बात के संग अब मैं लेत हूँ आप मन से विदा और कल फिर नवा विषय के साथ खेती के बात में उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।
1: कृषि मौसम आधारित सलाह और फसल सुरक्षा, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:35 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: 26 1 2 6

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। समय है चिंतन का। आज का विषय है आस्था। आलेख है स्वामी आत्मानंद का।
1: कहा जाता है कि हमें आस्थावान बनना चाहिए, पर प्रश्न उठता है आस्था किसके प्रति, अपने प्रति अथवा ईश्वर के प्रति। आस्थाहीनता को नास्तिकता भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद इस नास्तिकता की एक नई व्याख्या करते हैं। कहते हैं, ओल्ड रिलीजन सेड ही वाज एन एथीस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड, न्यू रिलीजन सेज ही इज एन एथीस्ट हु डज नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। अर्थात पुराने धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार स्वामी जी आत्मविश्वास की वकालत करते हैं। उनका तर्क यह है कि जो व्यक्ति अपने में विश्वास नहीं कर सकता वह ईश्वर में क्या विश्वास करेगा। ईश्वर में आस्था रखने की पूर्व शर्त है अपने में अपनी शक्ति में आस्था रखना। पर आत्मविश्वास को अहंकार का पर्याय नहीं मान लेना चाहिए। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अहंकार में दंभ होता है जिसका आत्मविश्वास में एकदम अभाव होता है। अहंकारी व्यक्ति को आत्मविश्वासी नहीं कह सकते क्योंकि तनिक सी चोट से अहंकारी अपने संतुलन को खो बैठता है और विश्वासहीनता का शिकार हो जाता है। आत्मविश्वासी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोता। गीता में इन दो प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। आत्मविश्वासी के लिए कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर रात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात वह अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करता है, स्वयं के द्वारा अपने आप को अधोगति में नहीं ले जाता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति अपने स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रश्न उठता है कि वह अपना मित्र और शत्रु दोनों कैसे हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए गीता कहती है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जब वह अपने पुरुषार्थ से अपने शरीर मन और इंद्रियों को जीत लेता है तब वह अपने आप का मित्र है, पर जब वह इस प्रकार तन मन और इंद्रियों को अपने अधीन नहीं कर पाता तब स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। अभी कहे इन दो श्लोकों में आत्मविश्वास की महिमा ही गाई गई है। अहंकारी व्यक्ति इस महिमा का अधिकारी नहीं होता। उसका चित्रण करते हुए गीता कहती है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनमानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। ये अहंकारी ऐसा सोचते हैं कि मैंने आज यह पाया, अब इस मनोरथ को पूरा करूंगा, अभी मेरे पास इतना धन है, भविष्य में और भी इतना हो जाएगा, उस शत्रु को मैंने मारकर मजा चखा दिया, अब दूसरे शत्रुओं को भी देख लूंगा, मुझे छोड़ इस धरती में और दूसरा ईश्वर कौन है, मैं सारे ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सब सिद्धियों का स्वामी हूं, मैं बलवान और सुखी हूं, मैं समृद्ध और जनबल से युक्त हूं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मौज करूंगा, मेरे समान दूसरा भला और कौन है। इस प्रकार के अज्ञान से ये अहंकारी मोहित रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है।

0: जबकि आत्मविश्वास के द्वारा वह सत्य के अधिकाधिक समीप पहुंचता जाता है। स्वामी विवेकानंद इस आत्मविश्वास को महानता का रहस्य मानते हैं और कहते हैं, विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास करो। यदि तुम पुराण के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए हुए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। एक दूसरे स्थान पर भी कहते हैं, अपने आप में विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। सभी क्षेत्रों में यदि अपने आप में विश्वास करना हमें सिखाया जाता और उसका अभ्यास कराया जाता तो मुझे निश्चय है कि हमारी बुराइयों तथा दुखों का बहुत बड़ा भाग आज तक मिट गया होता।
1: आस्था, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख था स्वामी आत्मानंद का। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। ये समय होता है श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज संध्या 6:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच द ओवल लंदन में पहले सेमीफाइनल खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। दिन में 10:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा दिन में 11 बजे। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आनंद लीजिएगा 7:30 पर।

कार्यक्रम नए तराने सुनेगा दिन में 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा संध्या 5 बजे। संध्या 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज की बात का विषय होगा जैविक खेती करो। साथ ही सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में। इसमें आज आप सुनेंगे ग्राम बहिराडी जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य ध्वनांकन किया गया कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। कार्यक्रम महिला सभा का समय होगा संध्या 5:35 पर। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। साथ ही सुनिएगा क्रम उड़ान। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। कार्यक्रम ईमेल करेंगे सुनी श्रोता सुन सकते हैं आज संध्या 6:20 पर।

0: क्षणप्रणालिं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है। जबकि जर्मनी

0: विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को पुष्पा साव का प्यार भरा नमस्कार।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के इस अंक में। श्रोताओं, जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और देश की भविष्य की बात करते हैं, तो इन सब के केंद्र में एक संस्था खड़ी दिखाई देती है, संसद। एक ऐसी संस्था जहां देश की करोड़ों आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। मित्रों, आज 30 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सतत संवाद का नाम है। श्रोताओं, वर्ष 1889 में दुनिया भर के देशों की सांसदों के सहयोग और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या संसद केवल एक भव्य भवन है? नहीं, संसद वह स्थान है जहां देश की सपनों को दिशा मिलती है, जहां विचारों का मंथन होता है, बहस होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं और जनहित के लिए कानून बनाए जाते हैं। और हमारे भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में संसद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां विविध भाषाएं, संस्कृतियां और विचारधाराएं एक मंच पर आकर राष्ट्रहित में संवाद करती है। और मित्रों, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है, राष्ट्र का विकास और जनता का कल्याण। श्रोताओं, आज के समय में संसद की कार्यवाही केवल संसद भवन तक सीमित नहीं है। डिजिटल माध्यमों ने हम नागरिकों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ दिया है। अब लोग संसद की कार्यवाही देख सकते हैं, महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुन सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए यह दिन प्रेरणा का अवसर है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब युवा जागरूक होंगे, अपने अधिकारों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर हम यह प्रण लें कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगी, संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखेंगी और एक जागरूक नागरिक के रूप में

0: बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम आज सुबह में। श्रोताओं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हमेशा यह बात याद रखनी होगी कि सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का सदैव पालन करें। नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि हमारी यात्रा सुखद हो और हम अपने गंतव्य तक शीघ्र और सकुशल पहुंच जाएं। तो आइए सुनते हैं यातायात नियमों पर आधारित आज का ट्रैफिक अपडेट उमाशंकर पांडे से।
4: नमस्कार, दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन दौड़ रहे हैं। जिले का शेष भाग से इन सड़कों के माध्यम से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज के परिवेश में जब सभी सड़कों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की कतार लगी हो, ऐसे में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें यातायात के नियमों की जानकारी हो और इस जानकारी के प्रति हम सभी की वफादारी हो। दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी अर्थात हमारे बच्चे, इन्हें यातायात नियमों की जानकारी देना या इन्हें इन नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। शासन स्तर पर इन्हें इस दिशा में तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किंतु परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। बच्चा पहले सब कुछ अपने माता पिता से ही सीखता है। कहने का आशय यही है मित्रों, कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने वही करें जिसका बच्चा भी अनुसरण करे, अनुकरण करे। जैसे अधिकांश घरों में लोग दो पहिया वाहन से ही किसी न किसी कार्य से आना जाना करते हैं, अतः घर से दो पहिया वाहन की चाबी उठाने से पहले हेलमेट उठाएं और प्रयास करें इस हेलमेट को अपने बच्चे से ही मंगवाएं। परिवार के सदस्यों या मित्र, दो पहिया में तीन सवारी कभी न चलें। आप कार में हो या दो पहिया में, मोबाइल की घंटी बजते ही वाहन खड़ा करें और बातें करें, ना कि वाहन चलाते हुए। इसे आपके साथ वाहन में आपका बच्चा भी देख रहा है। रेड सिग्नल के दौरान अंतिम सेकंड तक इंतजार करें और रॉन्ग साइड जल्दी के चक्कर में कभी न चलें, यह सोचकर कि सब चलता है, क्योंकि यह भी आपका बच्चा देख रहा है। अपने वाहन की गति हमेशा सीमित रखें, आपका यह प्रदर्शन बाल मन में अमिट छाप होगा, तब होगी आपकी और नई पीढ़ी की हर यात्रा शुभ और सुरक्षित।
3: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। इसका प्रसारण किया जाएगा आज दिन में 10:30 से 11:00 के बीच। श्रोताओं, बचपन में जब हम रात के खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को निहारा करते थे, तब लगता था ना कि मानो पूरा ब्रह्मांड कोई रहस्यमय कहानी सुना रहा हो। कभी टूटते तारों को देखकर मन में कोई इच्छा मांगी, तो कभी चांद को निहारते हुए अनगिनत सवाल मन में उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रोताओं, कि इस अनंत अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पिंड भी लगातार अपनी यात्रा पर हैं जो न तारे हैं न ग्रह और ना ही

चांद। तो क्या है ये? ये हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। और आज बात अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की। श्रोताओं, यह दिवस हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करना और यह समझाना कि अंतरिक्ष से आने वाली संभावित चुनौतियों के प्रति विज्ञान किस तरह हमें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि लगभग 6,60,00,000 वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने को डायनासोरों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में माना जाता है। इसी तरह 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र के टुंगुस्का में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था, जिसके कारण 830 वर्ग मील क्षेत्र में 80 मिलियन वृक्ष नष्ट हो गए थे। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड संबंधी घटना माना जाता है। इसी घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मान्यता दी। लेकिन श्रोताओं, इससे घबराने की नहीं बल्कि जानने की जरूरत है। सभी क्षुद्र ग्रह खतरनाक नहीं होते। वैज्ञानिक लगातार शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशनों की मदद से इन पर नजर रखते हैं। इनके अध्ययन से हमें अपने सौरमंडल की उत्पत्ति और करोड़ों वर्ष पुराने इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हमारा देश भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष में मौजूदा पिंडों की निगरानी और वैज्ञानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। श्रोताओं, विज्ञान हमें डराना नहीं बल्कि समझना सिखाता है। जितना हम अंतरिक्ष को जानेंगे उतना ही अपने भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बना पाएंगे और अपनी जिज्ञासाओं को नई उड़ान दे पाएंगे। श्रोताओं, आसमान में चमकती हर तारे की अपनी कहानी है और हर क्षुद्र ग्रह हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही अद्भुत भी। विज्ञान के साथ मिलकर इस अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की अपनी जिज्ञासा हमेशा जीवित रखें। और अभी जीवित रखते हैं एक मधुर गीत सुनने की इच्छा को।

इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं, हम आपको एक कार्यक्रम संबंधी सूचना देना चाहेंगे। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आश्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। साथियों, टप टप गिरती बारिश की बूंदी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली और ठंडी हवाओं का स्पर्श संकेत देता है कि अब बरसात का मौसम आ गया है। ये बरसात का मौसम अपने साथ सुकून भी लाता है साथियों, और प्रकृति की नई मुस्कान भी। लेकिन यही मौसम कुछ अनचाहे मेहमानों को भी हमारे आसपास ले आता है। सांप, बिच्छू, कनखजूरा और अन्य जहरीले जीव जंतु। ऐसे में बारिश का आनंद तभी पूरा है जब हम थोड़ी सी सावधानी भी साथ रखें। श्रोताओं, बरसात के दिनों में लगातार पानी भर जाने से कई जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और सूखी व सुरक्षित जगह की तलाश में घरों, गोदामों, खेतों और बगीचों की ओर रुक कर सकते हैं। इसलिए अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, झाड़ियों और घास की नियमित सफाई करें। रात के समय बाहर निकलते

में टॉर्च का उपयोग करें। खेतों या बगीचों में काम करते समय पूरे पैर ढकने वाले जूते और दस्ताने पहनें। बच्चों को बिना देखरेख के झाड़ियों या पानी भरे स्थानों पर खेलने ना दें। यदि घर में सांप या कोई जहरीला जीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन की सहायता लें। श्रोताओं, बारिश की हर बूंद जीवन का नया संदेश लेकर आती है। आइए इस मौसम की फुहारों का आनंद लें, हरियाली को अपनाएं, लेकिन सावधानी की छतरी हमेशा साथ रखें, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी बारिश का असली आनंद भी ले पाएंगे। इसी संदेश के साथ श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम आज सुबह से विदा लेकर अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। तो दीजिए अपनी रेडियो मित्र पुष्पा को अनुमति। आपका दिन मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार नगमे कार्यक्रम।

फिल्म गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी, संगीतकार के कल्याण जी आनंद जी को, जिनकी आज जन्मतिथि है। 30 जून 1928 को जन्मे कल्याण जी का संगीत का सफर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा। कपड़े के व्यवसाय से जुड़े परिवार से आने के बावजूद कल्याण जी आनंद जी ने अपनी धुन के दम पर बॉलीवुड पर राज किया। उनकी फिल्मी सफर की शुरुआत स्वतंत्र रूप से काम करने से पहले उन्होंने महान संगीतकार हेमंत कुमार की सहायक के रूप में काम किया था श्रोताओं, और 1954 की ब्लॉकबस्टर फिल्म नागिन में उन्होंने क्लेवियोनी नामक वाद्य यंत्र पर एक प्रसिद्ध धुन नागिन धुन बजाई थी, जिसने उन्हें रातों रात मशहूर किया था। तो श्रोताओं, आज हम कल्याण जी आनंद जी की संगीत से जुड़े हुए गीत हम आपको सुनवाएंगे। तो लीजिए सुनते हैं पहले रफू चक्कर फिल्म का ये नगमा, शैलेंद्र और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरा का लिखा गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। और आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की। कल्याण जी की आज जन्म जयंती है। बतौर संगीतकार कल्याण जी को पहला ब्रेक मिला 1958 की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त से। इस फिल्म का गाना चाहे पास हो चाहे दूर हो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी उनके पहले सहायक थे, लेकिन 1959 में फिल्म सट्टा बाजार और मदारी से दोनों ने आधिकारिक तौर पर कल्याण जी आनंद जी के नाम से जोड़ी बनाई।

1960 में आई राज कपूर स्टारर फिल्म छलिया इस मशहूर संगीतकार जोड़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों में भी जोशीली धुनें दी। 1970 का दशक इस जोड़ी के कैरियर का स्वर्ण काल था। इस दौरान उन्होंने थ्रिलर, एक्शन और पारिवारिक फिल्मों में संगीत का नया ट्रेंड सेट किया। केवल 1977 में ही उन्होंने जॉनी मेरा नाम, सफर, पूरब पश्चिम और सच्चा झूठा जैसी संगीत से भरपूर सुपरहिट फिल्में दी। तो आइए सुनते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये नगमा।

मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भी ब्लॉक ब्लस्टर सफ़र रहा। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी ऐतिहासिक फिल्मों का बैकग्राउंड भी दिया और संगीत तैयार किया। खई की पान बनारस वाला और ओ साथी रे इसी दौर के मशहूर गाने हैं।

1980 का दशक तकनीकी बदलाव का दौर था। इस दौर में डिस्को और पॉप संगीत का आगमन हुआ। 1980 में आई फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में उन्होंने पहली बार भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस फिल्म का गाना आप जैसा कोई और लैला ओ लैला आज भी क्लबों में बजाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का यही गीत।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने करीब 40 साल लंबे कैरियर में 250 से 300 फिल्मों में संगीत दिया। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्मों में इरादा और उल्फत की नई मंजिलें शामिल थीं।

आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में हमने याद किया मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी शाह जी को। आज इनकी जन्म जयंती थी। और इसी के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को

0: कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन, व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान

0: को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code.

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन ल सुनवात हन एक गोट बात, जेकर विषय हवे 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा। ये कार्यक्रम के संचालन करत हैं डॉक्टर राजन यादव।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा ये वार्ता में हमार संग प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, गद्य रचनाकार आदरणीय बहन जी सरला शर्मा जी हैं और शैक्षणिक परिषद की ओर से राजकाज से जुड़े हुए, शोध कार्य से जुड़े हुए डॉक्टर बी रघु कुमार जी, आप मन के स्वागत है। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के लंबा इतिहास है, पर हम जब देखथन के 25 बरस के छत्तीसगढ़ में हमार छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ तक पहुंची है। अग्गे जैसे बड़े बड़े साहित्यकार मन कहे हैं कि भाषा कल्प वृक्ष होते, भाषा ला हमन नहीं बनान, भाषा हमन ला बनाते। तो गौरव की बात है कि आज हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित है। तो राजकाज के भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के काय स्थिति है डॉक्टर बी रघु कुमार जी?
2: धन्यवाद आदरणीय। अभी वर्तमान में राजकाज में स्थापित तो नहीं हुए है छत्तीसगढ़ी है, जब से छत्तीसगढ़ बने हैं वहां से लेके एकर बर कुछ तैयारी हुए है। राजभाषा आयोग घलो करी नौ हमर साहित्यकार मन और भाषा के विशेषज्ञ मन घलो के मा काम करे है। कुछ पुस्तिका निर्देशिका छत्तीसगढ़ी में राजकाज में उपयोगी जेन हो सकत है वो विषय लेके कुछ पुस्तिका वगैरह हो, इस प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित करे गए है मंत्रालय स्तर पर और विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यालय मन में। योजना ये भी रही से कि जिला स्तर मन के कार्यालय मन में भी प्रशासकीय कार्य के समय राजकाज में छत्तीसगढ़ी भाषा के बने उपयोग होए करके प्रयास तो हो है, लेकिन ये कहे जा सकते है कि अभी औ कुछ प्रयास करे की आवश्यकता है आने वाले समय में, औ एकर कैसे विस्तार हो सकत है तो एकर बारे में भी औ हमला प्रयास करे की आवश्यकता है।
1: हाँ बढ़िया। हरि ठाकुर कहे है कि भाषा श्रवण कुमार सही होते, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक कला, लोक भाषा अपन खान हम लेके चलते सबला। तो हमारे यहाँ लेखन के भी बड़ा काम होते, अभी गद्य के बढ़िया रचना थे और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी उपन्यास के समीक्षक, छत्तीसगढ़ी साहित्य के समीक्षक, गद्यकार, कहानीकार आदरणीय सरला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहानी लेखन द्वारा छत्तीसगढ़ी के कैसे फैलाव होवत है?
3: आज कहानी हर वाचिक परंपरा ले बहुत आगू निकल रहे है और ए दिशा में हम देखा थन कि छत्तीसगढ़ राज बने के बाद कहानी लेखन है सिर्फ प्रेम दाम्पत्य एकर ऊपर आधारित नहीं रह गए। आज के कहानीकार, आज के जो प्रमुख विषय है, माने सियान सियानिन मन काकर कर रही, भविष्य के पेट भरे के चिंता कौन करही, तो वृद्धाश्रम बना थे का, वृद्धाश्रम में वो सियान सियानिन मन सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं, ए विषय ला ले करके कहानी लिखे गई गरु बुढ़ापा जेकर लेखिका है सरला शर्मा। आउ थोड़कन आगे आइन, आज के दिन में महात्मा गांधी घर कतका कन प्रासंगिक रह गए, अहिंसा के सदुपयोग या दुरुपयोग समाज में कौन तरह से हुआ थे, समाज के पिछड़े वर्ग ला कतका आगू आए के मौका मिला थे, माने महात्मा गांधी ला आज हमन व्यावहारिक रूप से कौन रूप में देखा थन, अतका ज्वलंत प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं चंद्रहास साहू और उनकर कहानी के नाम है गांधी चौरा। गांधी चौरा ला पढ़े के बाद हमन ला एक बार फिर सोचे बर पड़ जाते कि का महात्मा गांधी के अहिंसा हर जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म हर और बौद्ध धर्म के प्राणी मात्राणी दयालु भाव हर आज प्रासंगिक रह गए है। एकर मतलब होइस कि आज के कहानीकार मन आज के समस्या ला अपन विषय वस्तु बनावत हैं और यह बहुत खुशी की बात है।
1: अच्छा बताया आपने।

0: परदेसी राम वर्मा की मरिया, बहुत कहानी संग्रह इस दौरान आई सभी। बिहारी लाल साहू की सूरज पोटारी संधियार, पीसी लाल यादव की नियाव, सुधा वर्मा की धन बहार के छाँव माँ, चोवा राम बादल, रामनाथ साहू, सुशील कुमार भोले, गया प्रसाद साहू, डॉक्टर उर्मिला जी, कमलेश प्रसाद जी, चंद्रहास, आप स्वयं सरला शर्मा जी, और जो चंद्रहास जी के याद करे, गांधी चौरा, मंगरोहन, करिया अंग्रेज, गजब के उखर कहानी संग्रह भी आते हैं। तो कहानी के माध्यम से कहे जाते कि भाषा ला पुष्ट गद्य के द्वारा करे जा सकत है। तो गद्य में बढ़िया रचना होते, पर केवल रचना से ही काम नहीं चलाए, हमार पठन पाठन में भी आए चाहिए। तो स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ ही कैसे विकसित होवा थे डॉक्टर रघु जी?
1: आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं जानकारी ये दे दूं कि शासन स्तर पे, खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जो है ना अंश बनाए गए हैं। जैसे 2019-20 में एक प्रयोग हो इसकी, जैसे छत्तीसगढ़ हा बहुभाषी परिवेश के हवय, स्थानीय आदिवासी मन के घलोक भाषा है, तो वह मन ला महत्व देते हुए छत्तीसगढ़ी ला भी शामिल करके तो कक्षा 1 और 2 के लइका मन बर द्विभाषिक पुस्तक बनाए गए हैं। माने वो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, हिंदी और हल्बी गोंडी ऐसे टाइप के। तो ये एक प्रयोग है, बहुत सार्थक रहीस आज के तारीख में। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा के लइका मन ला जेखर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, जेखर बर सुगम छत्तीसगढ़ी भाषा हवे, वो लइका मन ला काफी सहायता मिलीस। बाद में कक्षा 3, 4, 5 में भी करीब करीब 20 से 25% पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला रखे गिरी से। ओकर बाद 9वीं 10वीं में घलोक लगभग 20 से 25% हिस्सा छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित विषय वस्तु रखे गिरी से। लेकिन अभी 2 साल हो गए एनसीईआरटी के पुस्तक मानला एडाप्ट करे के खातिर, अब यह नंद आ गए। 3, 4, 5 में या 9वीं 10वीं के किताब मन में जिन छत्तीसगढ़ी के अंश रही से वो है नंद आ गए है। एक प्रयास और चलत है अभी छत्तीसगढ़ी पर केंद्रित करते हुए सहायक वाचन के निर्माण करे जाते हैं। मां तो संभवतः ये सत्र में प्रकाशित हो जाए या लागू हो जाए ऐसे उम्मीद करे जाते। कहना ये चाहता हूं मैं है कि अभी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जतका हिस्सेदारी होना रही से उतका संतोषजनक नहीं है, लेकिन प्रयास है, चलत है शासन स्तर पे। तकनीकी कुछ कुछ दिक्कत आवत है शायद, एकर सेती मन थोड़ा से
0: आगे हो सकत
1: आगे
0: है।
1: हो सकत है संभव।
0: भाषा वैज्ञानिक बहुत बड़े हो हमारे यहाँ रमेश चंद महरोत्रा जी, उखर पंक्ति है, अब सुनिहा दीदी हमारे एक ठन गोठ हो, छत्तीसगढ़ ही कहत माँ उघरा सब लइकन के होठ हो। याने हम दूध भाषा जो कथन वो माता से जब शुरुआत हो, वो यदि हो जाए तो जो अच्छा बात बताया आप मन कि स्कूल शिक्षा में ओह जुड़ गए हैं। हमारी यहाँ कहानी के बाद गद्य के बात करी तो उपन्यास में भी बहुत बढ़िया अब रचना चले आते उपन्यास कला में। मणिराम साहू मितान, चोवा राम बादल, ये महाकाव्य भी लिखे हैं। चंद्रशेखर चकोर जी ये उपन्यास में है, रामनाथ साहू, परदेसी राम वर्मा, स्वयं सरला जी के मितान उपन्यास। तो उपन्यास विपुल मात्रा में बात है कहानी के बाद, दमदार जुन विधा है। तो मैं जानना चाहा सरला जी से कि छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लेखन के द्वारा हमारे ये भाषा के कतका विस्तार होवत है।
2: मैं एक बात आप श्रोता करवाना चाहिए कि कहानी हर जीवन के एक अंश मात्र है और उपन्यास हर संपूर्ण जीवन है।
0: जीवन है
2: एमा एक चीज और जोड़ना चाहिए कि वो हर समस्ती चेतना ला उद्घाटित करते, मतलब आम आदमी के समस्या मन ला संग में लेके चलते, तो हर उपन्यास कहते। ये विषय में जैसे आप अभी नाम ले वो परदेशी राम वर्मा, परदेशी राम वर्मा के आवा ला जब हम देखथन तो आवा उपन्यास में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगे हुए जो इलाका है तो उन इलाका के जनजीवन के थोरकुन हमें दर्शन मिलते, परंतु मूलतः आवा उपन्यास हर जगन्नाथपुरी पर आधारित और जनजीवन प्रभावित दिखे। एकर आगू हम चलत हन तो सब

2006 में एक उपन्यास आईस माटी के मितान। वो उपन्यास और आईस तब छत्तीसगढ़ बने के प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई से। वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के का प्रभाव समाज में पड़ीस। जगह जगह ग्राम पंचायत मन में महिला मन के पढ़े लिखे बर रात्रि पाठशाला, लड़की मन के कन्याशाला स्कूल और अटल सड़क योजना के द्वारा गांव गांव ला सड़क ले जोड़ना और एकर अलावा भी जैसे ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत गुड़ी के गोठ ला चौपाल से लेकर के साहित्य तक पहुंचाए के काम ए समय हुई। ऐसे समय में जब राज्य के चहुमुखी विकास होत रही से त ये विकास ला के धारा ला आम जनजीवन से जोड़ते हुए और गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मन ला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए उपन्यास आईस। तेकरे बर वो उपन्यास के नाम पड़ीस

0: के धारा ला आम जनजीवन से जोड़ते हुए और गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मन ला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए उपन्यास आईस। तेकरे बाद वो उपन्यास के नाम पड़ीस माटी के मितान। अब आओ आगे चलिन, 10 साल आओ आगे चलिन, तो एक नाम अभी आप ले रामनाथ साहू। रामनाथ साहू के उपन्यास है पथरा ले उठत आगी। ये उपन्यास हर गुफा मानव हर जे दिन पहली बार आगी के उपयोग देखिस सीखिस नहीं देखिस वहाँ से लेकर के आज माचिस के डिबिया में बंद आगी तक, चूल्हा बारे के झंझट ले मुक्ति पा करके गैस सिलेंडर तक जो परिवर्तन समाज में आईस और माई लोगन मन ला चूल्हा चौका के झंझट ले उबर के पढ़े लिखे के जो समय मिलिस, समाज हर माई लोगन मन के शिक्षा ऊपर जो ध्यान दिस, यह बहुत बढ़िया ढंग से इतिहास और के संगे संग सभ्यता और संस्कृति के विकास ला प्रदर्शित करत उपन्यास है। ओकर नाम है पथरा ले उठत आगी। यह बहुत सशक्त उपन्यास है रामनाथ साहू के।
1: जैसे स्कूल शिक्षा के बात हो, इस हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में होए चाहे शोध कार्य के रूप में है, हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है रघु जी?
2: उच्च शिक्षा में घलोक छत्तीसगढ़ी पर काफ़ी कुछ हो है, जैसे स्नातकोत्तर में एमए में छत्तीसगढ़ी साहित्य भी रखे गए है। ओखर बाद सबसे जिन बढ़िया काम उच्च शिक्षा में जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे महाविद्यालयीन स्तर पे, भाखा ला केंद्रित करते हुए लघु शोध क्रियात्मक शोध और शोध पीएचडी के इमा छत्तीसगढ़ी के अलग अलग आयाम ला स्पर्श करते हुए बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। बस मोला एक ठन मने इमा लगते विषय है कि साहित्य ला केंद्रित तो हुआ थे, अब्बड़ अकन काम हुआ थे साहित्य ला केंद्रित हुए, भाखा ला केंद्रित करते हुए ये काम मल्ला यदि केंद्रित करे जाए तो औ हमार भाषा हा समृद्ध हो ही, ऐसे मोर मानना है।
1: हाँ, जैसे बताए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वहाँ एमए के स्वतंत्र जब पढ़ाई होते तो भाषा विज्ञान है
2: जी।
1: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, एक दो यूनिवर्सिटी में औ वैष्णव चलत है
2: जी।
1: दूसरिया बात पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में तो भाषा लेके चलत है, पर दूसर जगह जहाँ साहित्य लेके चलत है तो ओमा एक दो पाठ एक आग दो अंश भाषा अभी लेके प्रयास होते है, पर जवाब जैसे कहा था वो हो चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी एक शोध कार्य पूरा होते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी के खंड काव्य, वो मतलब कहानी पर होते 2000 के बाद वाले खंड काव्य में जब हो है तो जैसे मनीलाल कटकवार के नागेश्वर कन्या ये 2002 की ना, मेहता राम साहू के रतन बपरी, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री, डॉक्टर पंच राम सोनी, हरि ठाकुर सहित वीर नारायण सिंह, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, अमर चिन्हारी, ये खंड काव्यिक हर गणेश यदु, भूमकाल, बुधराम यादव, हेमनाथ यदु, कपिलनाथ कश्यप, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, तीमन खंड काव्य की जो रचना करे है तो ओमा अच्छा ढंग से वो भाषा है। मैं जीवन यदि सुशील कुमार यदु जी के रचना एक पढ़ाते रहे हूँ ओमा छत्तीसगढ़ के अमर सेनानी करके, तो ओखर जो मैं एक पढ़े और रचना तो ओमा लगीस के भाषा ला बढ़िया अच्छा अतका ढंग से रखे है कि हिंदी और दूसर भाषा के रचना के टक्कर से कम नहीं है, ओकर मुकाबला के है। यहू याद रखबे भुलाझन तो जाबे, कफन बांध के मुड़ का टायन कभू हम, हो इसका के भिनसर हा पायन न पायन, लहू के तो लाली वो गायन कभू हम, कोनो जानिन पहचानिन एकरो न मतलब, वतन गीत मस्ती में गायन कभू हम, शहीदी लहू एक दिन सिर चढ़ के कही कि दाहकत अंगारा धध कायन कभू हम, कफन बांध के मूर कटायन कभू हम। तो कोनो भाषा के आप स्वतंत्रता सेनानी पंक्ति के मुकाबला हम खड़ा कर सकत हो, तो भाषा में वो जो मार्दव चाहिए, जो ओज चाहिए, जो अर्थ गंभीरता चाहिए तो छत्तीसगढ़ी में है, पर ओला रचना करैया मन केवल दीदी अक्सर कथे लिख के रख दे काम नहीं चला,

0: ये तुलसीदास जी जैसे और जायसी जैसे सामर्थ्यवान कबीर पाके औधी दंदनात ऊपर चढ़ गए, सूरदास जी से कबीर पाके ब्रजभाषा कहाँ पहुंच गए। तो मात्रा नहीं गुणवत्ता पे ध्यान होना चाहिए। तो एक दमदार हमारी यहाँ एक ठन विधा है और ओमा बढ़िया रचना आते छत्तीसगढ़ी निबंध मा नाटक मा इखर कैसे बढ़िया प्रयोग होते और का आशाजनक है। आदरणीय सरला जी में प्रकाश डाली।
1: आज हमन जोन चर्चा करत हन छत्तीसगढ़ी के 25 साल, बढ़िया विषय, बहुत बढ़िया है। आप मन अभी अभी डॉक्टर राजन यादव से सुशील यदु के कविता के एक अंश ल सुने, आप मन ध्यान ले, भाषा हा कतका उदार हो गए है कफन। और भी एक ठन उदाहरण लेहे हम, अन्य अन्य भाषा मन के शब्द मन ला बहुत उदारता पूर्वक आजकल हमन छत्तीसगढ़ी में निभात हन। और एकर सबसे बढ़िया उदाहरण यह निबंध में पड़ते, ओकर नाम है निबंध, जेकर कोई बंधन नहीं है तो भाषा के बंधन घला तो टूटिस ना। तो थोड़ी कन अपन मन ध्यान देवो एमेर कि भाषा के बंधन हर टूटी से थोड़ी कन विषयांतर अगर नहीं हो बताना चाहिए। हाँ अभी मैं आकाशवाणी निकला तरह तो मोर बाई है मोला कहिस, गांव जात हूँ मैडम, संडे के आहो गाड़ी लेट नहीं रही तो टाइम में आ जाऊ।
0: हाँ
1: ध्यान देव आप मन, संडे के वह जाही और ट्रेन हर लेट नहीं रही ना, ट्रेन लेट तो वह टाइम में पहुंच जाए। कठिन शब्द अंग्रेजी के हुई, ए हरे आज के छत्तीसगढ़ी। और मोर ये कहना है कि जौन भाषा हर जतके ज्यादा अन्य भाषा मन के शब्द मन ला आत्मसात कर ही अपन में मिला ही
0: जी जी
1: डेरावा झन। अरे दूध में कतको पानी मिला रहा दे रही तो वह दूध है, पानी तो नहीं हो जाए। तो उसने छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ी रही। दूसर एक बात, आज के निबंध जो लिखे जाते हैं तो उन निबंध मन ला पढ़ के हमन ला ये मालूम होते कि हमन ये छत्तीसगढ़ी के 25 साल में हमन सबसे बड़े काम जो करे हैं, हमन 52 अक्षर ला सहर्ष अपना ले हैं। आज हमार भाषा में, हमार लेखन में, हमार बोली बतरा में हमन 52 अक्षर के प्रयोग करत हन। एक बात और ध्यान दीन ना भाई कि हमार छत्तीसगढ़ी की लिपि है तो देवनागरी चेना,
0: जी
1: जौन देवनागरी संस्कृत और हिंदी के है। तो जब हम हिंदी और संस्कृत के देवनागरी ला अपना लेन, 52 अक्षर ला अपना लेन, तो हमन रास्ता ला रब्दा काबर कहिबो। एक बात, और
0: जी
1: दूसर बात, आज के निबंध है आज के समस्या मन ऊपर नहीं लिखी ही, आज के लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। तभी तो सरला शर्मा एक निबंध लिखते, मोर करण फूल मोबाइल, काबर ए मोबाइल है सही में करण फूल हो गए है। और कतका कन एक्सीडेंट करावत है लड़का मन के पढ़े लिखे में चेत नहीं, के लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। ये है निबंध के बारे में हो। अब एकांकी और नाटक,
0: जी
1: नाटक हर समय ज्यादा लेते हैं, एकांकी है कम। ता एकांकी घलाव हर समाज ले चित्रित करते, नाटक घलाव हर समाज के समस्या मन ले चित्रित करते। आज के छत्तीसगढ़ी नाटक हर एक बहुत बड़े समस्या समेट के चले हैं। आप मन ले चलो बिलासपुर ले चलत हो नंद किशोर तिवारी के अंगना में, तो उन्हें एक क्षण लिखे हैं, कहाँ गंवा गए मोर कुआ, काबर हल्का पटवारी नंबर खेत नंबर वहां टोडर मल के जमाना ले चलत आवत है, भूमि संबंधी दस्तावेज मन के। और सब मां पटवारी हर एक ठन जमीन ले बता दी, सोमा कुआं खना गिस, कुआं खनाए के पैसा ले लीन, कुआं कहाँ गंवा गए जी, अरे वो जमीन ही नहीं है तो कुआं कहाँ ले रही। अतका बड़े व्यंग और अतका बड़े सामाजिक विसंगति ला अगर कोई एकांकी या नाटक हर दर्शात है, तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ी गद्य ला संभारे में व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोकाक्षर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है वो है बहुत बढ़िया काम कर रहे।
0: माँ मैं पढ़ता हूँ बीच बीच में।
1: लोकाक्षर
0: अच्छा
1: ग्रुप में आखर के अरग नाम के जो निबंध संग्रह है जेमा गद्य के 16 भाग संस्मरण निबंध कहानी सब, वो 16 कला के एक एक दिन एक एक दिन उदाहरण सहित प्रशिक्षण रह गए इस लोकाक्षर में। और यह है छत्तीसगढ़ी गद्य के उज्जवल भविष्य ला देखाते।
0: आप मन जो चिंता करे हो भाषा कैसे एक बारगी खोजेल पर जथे
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ी ल, हरि ठाकुर बढ़िया बात करे हैं।

0: छत्तीसगढ़ी कविता नानकुंखर कविता है, धान के कटोरा संग्रामा। भाषा हा सर्वन सही होते, जब कांवर ल उतार के यती वती होते, तहां ले शब्द भेदी बान हा हर लेते वो खर प्राण ला। शब्द भेदी बान ले अपन भाषा ला बचाए बर, होए त खांध ले कांवर ल उतारो झन, बोहे रहो औ काल खंड ला खंड खंड करके रेंगते रहो, सजग रहिल पढ़ी। हमन देखे हन के अब राजभाषा बन गए छत्तीसगढ़ी, पर सरकारी कार्यालय मन मा ऑफिस मन मा बोलचाल के रूप मा छत्तीसगढ़ी भाषा हमार गोठ बात मा कतका प्रयोग मा आते। डॉक्टर रघु जी,
1: एखर चर्चा शुरू करे पहली मैं अभी थोड़ी देर पहली दीदी है जिन उदाहरण दिस भाषा हाँ, के हाँ, प्रयोग के संबंध में वही चीज ला महू है बहुत दिन से निहारा था जाना था मैं हूँ। एक बार हमार साथी मन खैरागढ़ डाइट के हमार साथी मन एक लघु शोध करीन और भाखा के एक कतका का स्थिति है एकर बारे में चर्चा करके मने मन शोध लघु शोध करीन। उमा राह चलने वाले मन से, सब्जी बेचैया मन से, रिक्शा चलैया से सबसे बात करीन और उमा दीदी जैन उदाहरण दीस ना वही स्थिति रही से 1500 शब्द में करीब करीब 400-450 शब्द उमन अंग्रेजी शब्द मन के उपयोग कर रहे थे स्वाभाविक रूप से, ये स्थिति रही से। तो अभी जैन आप जानना चाहते हो प्रश्न हो इसकी शासकीय कार्यालय मन में दैनिक वार्तालाप मन में का स्थिति है, ये है बहुत संतोषजनक तो नहीं है। ये है ऐसे चीजें मातृभाषा या हमार भाका ला स्वतः यदि हम प्रयोग नहीं करबो संवाद में तो दूसरा आदमी है वो कहां ले सुनी जानी।
0: हाँ, अपन बोली भाषा में गर्व तो करना चाहिए,
1: करना चाहिए तो। वो मां कार्यालय मन में जावे तो हिंदी हो अंग्रेजी
0: नहीं। मैं तो लड़का मन ला विश्वविद्यालय में पढ़ात रहो तो कथो कोई विषय पूछतो प्रश्न छत्तीसगढ़ी में बोल पावे तो छत्तीसगढ़ी में बोल, या जौन प्रांत ले आए तो भाषा बोल, हिंदी में नहीं आए तो मैं बोल बोल तो
1: नहीं।
0: तो ये उत्साह वर्धन करना चाहिए। और यदि हम जानत हन छत्तीसगढ़ी तो सामने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी तुम्हार से बात करना चाहिए। भाषा ला पोठ करेल है तो गद्य के एक से एक रचना आना चाहिए, पर सबसे ज्यादा लिखे कविता जाते। तो अभी जो छंदोबद्ध रचना करत हैं बढ़िया बढ़िया शब्द के प्रयोग होते, तो हमारे जो नवा कवि जिखर चर्चा करत रही है दीदी मन कि डॉक्टर सेवाराम पांडे जी, प्रभंजन शास्त्री जी, ये मैं 2000 के बाद के रचनाकार मन रचना जो आए उखर अनुसार बताता हूँ। मणिराम साहू मितान महाकाव्य इंखर, रामेश्वर शर्मा, बुधराम यादव, मणि मनेश्वर, डॉक्टर पीसी लाल यादव, धनेश्वरी गुल, आशा देशमुख, संगीता वर्मा, राम कुमार चंद्रवंशी, बलदाऊ साहू, चंद्रशेखर यादव, बंधु राजेश्वर खरे, चोवाराम बादल, भगत सिंह सोनी, संतराम देशमुख, राजन प्रसाद सिन्हा, रमेश सोनी, पंचराम सोनी और सुखदेव सिंह, डुमन लाल भाई, डॉक्टर रमा कांजी, पुरुषोत्तम ठेठवार, राजकुमार चौधरी, सचुभूषण, अजय अमृतांश, मणि मनेश्वर, त्रुपति साहू, विजेंद्र कुमार, अशोक पटेल, उर्मिला शुक्ल, ऐसे बहुत हमार युवा जो रचनाकार हैं, स्थापित रचनाकार है, उखर रचना अब आत है। तो कविता के संग संग गद्य की ओर भी आगे आए। मैं आपसे दीदी एक प्रश्न करी हूँ कि आप मन संगोष्ठी सभा सोसाइटी में बहुत आज जात रहा, तो संगोष्ठी सम्मेलन और दूसर साहित्यिक आयोजन में छत्तीसगढ़ी के कतका भागीदारी होते है?
2: छत्तीसगढ़ी के भागीदारी में मोला कोई संशय नहीं है
0: जी,
2: बहुत हुआ थे। पर वही मैं पहली कहे ना कि कविता के क्षेत्र में हुआ थे। अभी कविता में का हुआ थे कि लोगन करा अतका समय नहीं है कवि सम्मेलन रात भर जाग के सुने के, उन मोबाइल में मगन है, उन और कुछ मगन। और दूसर बात कि कविता में छंदबद्ध रचना पढ़ाइया मन के संख्या क्रमशः कम हो जात है, सबो जन लक्ष्मण मस्तूरिया नहीं हो भाई
0: जी जी जी।
2: और तहत में पढ़ाइया जवन कवि मन है, कवि कवियत्री मन है, ओ मन जनता के श्रुति मधुर शब्द दे नहीं पावे, काबल के उनकर पास लय और अभाव हो जाते। तीसर जो सबसे जरूरी बात जो आग है, अभी छत्तीसगढ़ी के 25 साल लग देखा थानी हमें ला एहू बात ऊपर ध्यान रखना पड़ी कि आज के जो कवि है तो उन्हें सोशल मीडिया कति मुड़ गए है
0: जी।
2: आज वो कवि है व्हाट्स

0: व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में तो रील बना के तब अपन यूट्यूब में अपन कविता मन ला पढ़ के सुना के प्रचार प्रसार कर लेते। दूसर बात छत्तीसगढ़ी कविता सुनैया रात रात भर जाग के ओ मन के अभाव गांव में भी देखे बर मिलत है। तो ओकर कारण भी हमन ये देखत हन कवि सम्मेलन मन के आयोजन में थोड़कन कमी आई से। दूसर एक कारण और मोला लगत है कि ये जो अभी सोशल मीडिया में जो हमन प्रस्तुत करत हन चाहे छत्तीसगढ़ी गद्य हो पन एहू है तो एक छत्तीसगढ़ी के बहुत बड़े सुखद पक्ष है ना भाई।
1: विशेषकर हमन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हाँ हमन देखे हन के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होइस लोक उत्सव होइस ओमा तो बढ़िया प्रभाव पड़ी से। नंद कुमार साहू जी राम कथा के माध्यम से बहुत बड़े काम करें तो लोकाक्षर के जब आप नाम करें नंद किशोर तिवारी स्थापित अखबार मन तको आजकल हफ्ता में एक ठन पेपर एक पन्ना जरूर छत्तीसगढ़ी का छापत हैं। तो हमन आशा करत हन कि छत्तीसगढ़ी भाषा विकास के पथ में बने आगे बढ़त हैं। ये 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा की जब हम बात करी तो हमन आशा के अनुकूल चलत हन अपन पांव जमात जाते। और अंत में मैं यही फिर कहीं हूँ आप मन बढ़िया बतायो जौन जौन दिशा में छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार हो सकते काम करे जा सकते फिर वही हमार बहुत बढ़िया कवि हरि ठाकुर की बात लेके कि अपन भाषा बाँचे रही तो हमार पहचान घलो बाँचे रही नहीं तो हमू मन कचरा में मिझरा जाबो जर जाबो भूंजा जाबो और एक दिन राख बन के सिरा जाबो। लोकमान्य तिलक रही से कि भाषा में स्वतंत्रता के बीज होते तो अपन भाषा ला बचाए रही बनाए रखी और बढ़िया प्रयास करी। आप दोनों जन ला बहुत बहुत बधाई बहुत बढ़िया विचार आप मन रखे हो धन्यवाद।
2: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा एक विषय में अभी आप मन गोट बात सुनत रहा और गोट बात में भाग लेवत रहीन श्रीमती सरला शर्मा डॉक्टर राजन यादव और डॉक्टर बी रघु कुमार और ये कार्यक्रम के संचालन करत रहीन डॉक्टर राजन यादव और एक संग आज के ये कार्यक्रम ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में, पिंटू की पप्पी फिल्म से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल सुनी। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधान। इस फिल्म का गाना लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तनिष्क वायु ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है

0: कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में

बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीर जी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: से है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी

फिल्म उपकार बना रही थी। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनि

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश के पात्र किसानों को इस वर्ष भी पिछले खरीफ सीजन के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को एकमुश्त यूरिया दिया जाएगा। वहीं स्टॉक सीमित होने की स्थिति में उपलब्ध मात्रा पहले वितरित की जाएगी और शेष यूरिया बाद में स्टॉक पहुंचते ही संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि DAP उर्वरक के वितरण की पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

0: जबकि संशोधित निर्देश केवल यूरिया वितरण के लिए प्रभावी होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। यह सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मारकंडे ने जारी की है। हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शीतल नायक को दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्षा सिंह को सह प्रभारी, रंजिता रंधावा को बस्तर संभाग का प्रभारी और जानकी कोरसा को सह प्रभारी, फुलेश्वरी पैकरा को बिलासपुर संभाग का प्रभारी और किरण साहू को सह प्रभारी, किरण मरकाम को सरगुजा संभाग का प्रभारी और रजनी तिवारी को सह प्रभारी बनाया गया है। सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज पर गए हुए थे। इनमें से 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार रायपुर से। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। आकाशवाणी रायपुर से ही अब हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।

0: छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के धान की बेहतरीन किस्में देश विदेश में विख्यात हैं। धान की हरी भरी फसल जब लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ महतारी ने धानी चुनर ओढ़ ली हो। इसी दिलकश नजारे की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। हरियाली से भरे पूरे छत्तीसगढ़ में पहले पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, लेकिन अब यहाँ के किसान उन्नत तरीके से खेती करने लगे हैं। वैज्ञानिक खेती ने भरपूर उत्पादन के द्वार अवश्य खोले, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया। कृषि वैज्ञानिकों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे असरदार उर्वरकों से परिचित कराया। कम खाद में ज्यादा उत्पादन के इस तरीके को किसानों ने हाथों हाथ लिया और इसे अपनाकर अपनी खेती को भरपूर मुनाफे के सौदे में बदल दिया। इस बारे में कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कृषि उत्पाद आयुक्त और सचिव सुशील शहला निगार का कहना है,
1: एक उर्वरक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए बेसल डोज के रूप में रूट के ग्रोथ के लिए और शुरुआती में वो डालते हैं, तो उसका वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पर यूरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो तीन चरणों में किसान यूज करते हैं, शुरू में भी करते हैं, फिर बीच में कुछ समय बाद करते हैं धान की बोनी के, किंतु डीएपी का उपयोग शुरू में ही करते हैं। डीएपी हमारे पास 35-36% है सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिला करके, तो डीएपी के विकल्प के रूप में एक हम नैनो डीएपी को ले रहे हैं जो तरल फॉर्म में रहता है। ये जो हम जिस खाद की बात करते हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। नैनो डीएपी जो है या नैनो यूरिया, वो जो है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इसका 500 लीटर एक बैग को रिप्लेस करता है। विगत वर्ष भी कुछ उठाव हुआ था और इस वर्ष हम लोग बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करें ताकि वो जो ग्रैन्युलर फॉर्म में जो कमी है उसका प्रतिस्थापन किया जा सके। सो इस तरीके से हम लोगों ने जिलेवार एक रणनीति बनाई है कि जहां पर जितना भंडारण है और जो जिले की कंजम्पशन है उसको प्रतिस्थापित किया जाए इन खादों से। इसके अतिरिक्त हम लोग बायो फर्टिलाइजर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये चुनौती एक अवसर के रूप में भी सामने है, जो सस्टेनेबल कृषि की हम लोग बात करते हैं या भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है और पूर्व से ही हमारे राज्य में जैविक खेती मिशन भी चल रहा है राज्य पोषित योजना के रूप में। तो जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो बिल्कुल परंपरागत पद्धति है और उसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को भी हमने क्लस्टर के फॉर्म में राज्य ने लिया हुआ है विगत वर्ष से। तो इस चुनौती को हमने किसानों से ये अपील की है कि हम इसको एक अवसर की तरह देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है, इतना बेहतर यहाँ का क्लाइमेट है, तो हम क्यों ना सस्टेनेबल कृषि की ओर जाते हुए बायो फर्टिलाइजर का यूज करें और जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं परंपरागत उनका भी उपयोग करें।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक है। ये किसानों के लिए

0: एक सौगात भी हैं। पारंपरिक खाद यानी यूरिया और डीएपी के प्रभावी विकल्प के रूप में इससे किसानों को खाद के भारी भरकम बोरों से छुटकारा मिला है और अब वे छोटी छोटी बोतलों में बंद पोषक तत्वों के चमत्कार से खूब खुश हो रहे हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लाना, रखना और इस्तेमाल करना अब बेहद आसान जो हो गया है। नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में ग्राम पटेवा के किसान मोहन साहू ने बताया।
1: और अभी फिर डलवा है, अभी पीठ वाले स्प्रे में डलवा, लेकिन दोनों में भी बराबरी सेम टू सेम है, मतलब चना में बहुत ज्यादा ग्रोथ है भी। तो नैनो डीपी से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और पर साल जैसे मैं पता है ना करण भाव, जैसे बूट वाला चना है मोर, तो मोर चना पहली बिके मार्केट में, तो ये मोर चना 25 रुपए किलो बिके, सामने वाला कहे 20 रुपए, मतलब ए अंतर इसे, मतलब ऐसे फायदा रही से। एक सत्य मैं कहा था कि मोर अनुभव के हिसाब से हर किसान मतलब नैनो डीपी नैनो यूरिया अपनाना चाहिए।

0: दरअसल नैनो यूरिया के तरल नाइट्रोजन उर्वरक हैं। ये पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है। पौधों के लिए पारंपरिक यूरिया सिर्फ 30-50% तक ही उपयोगी होता है, जबकि नैनो यूरिया पौधों को 80% तक पोषण देते हैं। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक 45 किलोग्राम के बोरे के बराबर होती है। यही वजह है कि पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में नैनो उत्पाद काफी किफायती हैं। इफ्को के उप महाप्रबंधक श्री दिनेश गांधी इस विषय में और जानकारी दे रहे हैं।
1: नैनो उर्वरक जो है वो अभी आज के खेती की नई तकनीक है, जिसमें हम नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे दानेदार खाद है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम उसकी जो दक्षता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे जो एक यूरिया का दाना है वो 1-2 मिलीमीटर का होता है, उसको हम नैनो तकनीक से 55,000 टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका जो एक टुकड़ा है वो एक नैनो का कण होता है, जो कि 50-100 नैनोमीटर का होता है, जिसका और इसकी जो क्षमता है वो 10, इसकी जो सतही क्षेत्रफल है वो 10,000 गुना अधिक होता है। तो इससे उसकी जो कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है। फिर ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पत्ती के माध्यम से उसमें जो स्टोमेटा होता है उससे पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां जाके वो अपना काम चालू करता है, चाहे वो नाइट्रोजन के कण हो या फॉस्फोरस के कण हो। तो ये जब पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी का जो नैनो जो उर्वरक है वो पौधे के अंदर रहता है, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार से पौधे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और इसकी जो उपयोग दक्षता है वो 90% से अधिक होती है। जबकि जो दानेदार खाद है उसका दानेदार यूरिया का 25-30% हिस्सा ही पौधा उपयोग करता है तथा दानेदार डीएपी का 30-35% ही पौधा इस्तेमाल करता है, बाकी जो है या तो जमीन में पड़ा रहता है या पानी या हवा के साथ में वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नैनो यूरिया के इस्तेमाल से

0: हम न सिर्फ हमारी जमीन को, पानी को और हवा को सुरक्षित करते हैं, बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा ये जो नैनो उर्वरक है, इसकी कीमतें जो हैं वो दानेदार उर्वरक से काफी कम है। किसानों के लागत में भी, खेती की लागत में कमी आती है। इसके अलावा सरकार जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर भारी भरकम अनुदान देती है, वो भी इसमें बचत होती है सरकार की। इसका छिड़काव करना काफी आसान है। किसान भाई अगर कोई कीटनाशक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, अलग से उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इफको जो है वो ड्रोन भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 10 लीटर पानी की जरूरत होती है एक एकड़ के लिए, और 5 से 7 मिनट में वो जो आधा लीटर नैनो उर्वरक है उसका घोल बना के हम 5 से 7 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो काफी आसान है। और इफको जो है इसको 300 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को चार्ज करती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो है नैनो उर्वरक जो है अब आगे श्रृंखला के रूप में नैनो जिंक और नैनो कापर भी इफको लेके आई है, जिसको हम खेती में बेहतरी के लिए और अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक उर्वरक है उसका बेहतर विकल्प के रूप में आया है, और इसकी मात्रा को हम, इसके उपयोग से रासायनिक खाद की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो ये आज के युग का खाद है, इसका एक किसानों के लिए वरदान के रूप में आया है, क्योंकि अब जब रासायनिक खाद की हमको कमी हो पड़ी है, विदेशों से आयात कम हो पा रही है, उपलब्धता इसकी कम हो गई है, तो ऐसे में अगर हम नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, हम अपने फसल की गुणवत्ता को बचा सकते हैं, हम अपनी लागत को बचा सकते हैं, और हम खेती को और बेहतर की ओर ले जा सकते हैं। नैनो डीएपी जो है उसको हम बीज उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसके माध्यम से वो नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कण है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब बीज उसमें अंकुरण होता है और उसमें जब जड़े बननी चालू होती है, तो ये नैनो फास्फोरस कण उसी समय पौधे को प्राप्त होते हैं, उसकी जड़ों में पहुंच जाते हैं, तो उससे उसके जड़ के बढ़वार में मदद मिलती है, उसकी संख्या अधिक बढ़ती है और पौधा मजबूत बनता है। तो ये एक तरीके से ये नैनो उर्वरक जो है वो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसकी कंसे बढ़ाने में और उसकी उपज को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अभी नैनो उर्वरक की बात हो रही इनकी लागत को लेके, तो ये जो नैनो उर्वरक है वास्तव में देखें अगर हम, तो दानेदार जो उर्वरक हम लोग विदेशों से आयात करते हैं तो इसकी कीमतें जो है हमको डॉलर में देनी होती है, जो इसके जो भुगतान होते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो एक बोरी की, अगर यूरिया की बात करें तो इसकी कीमत आज के समय में 5,000 रुपए तक है, जबकि किसान भाइयों से सरकार जो है 266.50 रुपए ही चार्ज करती है, तो बाकी का जो राशि है वो भारत सरकार अनुदान के रूप में देती है। उसी तरीके से अगर हम डीएपी की बात करें तो एक बोरी डीएपी जो 50 किलो का होता है वो भी आज 5,000 से 6,000 रुपए उसकी लागत हो गई है। तो किसानों से 1,350 रुपए सरकार लेती है, बाकी उसको अनुदान के रूप में देती है। तो इस तरीके से 2 लाख करोड़ रुपए सालाना जो है भारत सरकार रासायनिक उर्वरक के अनुदान के रूप में खर्च करती है, जबकि जो नैनो उर्वरक है उसी के बेहतर विकल्प के रूप में है। इसकी जो कीमतें हैं वो दानेदार खाद से भी कम है। जो नैनो यूरिया है आधा लीटर का बॉटल है वो इसकी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसकी कीमत मात्र 225 रुपए है, जबकि नैनो डीएपी जो है उसके आधा लीटर की बॉटल जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है उसकी कीमत 600 रुपए है, जबकि इसके ऊपर भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देता है, ये बिल्कुल अनुदान रहित है और सीधे किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से न सिर्फ किसान के स्तर पर इसकी लागतें कम है बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ता है। तो ये एकदम खेती के लिए बहुत ही लाभकारी उत्पाद है।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: हैं और उनकी शाखाओं में अच्छे दाने भरते हैं। नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक डीएपी के 50 किलोग्राम बोरे के बराबर काम करती है। इसका मतलब किसान भाई परिवहन, भंडारण और छिड़काव के कई झंझटों से मुक्त हो जाते हैं।
1: मोर नाम ताराचंद साहू है, मैं ग्राम सोनेसिली के किसान हूँ और पिछले पूर्वज मन जैसे करत रहे वैसन खेती महू करत रहे हम, लेकिन पिछले साल से मुला अपन खुद के अनुभव कि मोर धान हाँ 5 एकड़ में बोरे हम मर गए। गांव के हैंडपंप जवाब दे दिस कि पानी के बहुत बिगड़ाल समस्या हुई, वो स्थिति में ये निर्मित हुई कि भविष्य में सोचो कि अगर हम तो आज पानी के मतलब उपलब्ध है, हमार आने वाला भविष्य जो हमारे छोटे बच्चा है ओकर मन के बिना पानी के भविष्य कैसे नहीं। तो ये में ना मैं अभी चना लगा हूँ, चना में नैनो डीएपी के पहली उपयोग करे मैं ओकर पहली नैनो डीपी का हर मोल मालूम ही नहीं रही से। 80% आदमी धान निभो है, दलहनी तिलहनी के उपयोग करे है और फसल है बहुत बड़ी।

एनओ डीएपी एक तरल फास्फोरस और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जिसे इफको ने विशेष रूप से पौधों की जड़ों के विकास और मजबूती के लिए तैयार किया है। ये फसल को शुरुआती दिनों में अच्छा पोषण प्रदान करता है जिससे पौधे मजबूत होते हैं।

0: नैनो उर्वरकों के आसान इस्तेमाल की सलाह के लिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। बस किसानों को उन्हें ये बताना होता है कि वे कौन सी फसल ले रहे हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक होता है कि किसान इनका उपयोग बुवाई के समय करना चाहते हैं या खड़ी फसल पर। आजकल छत्तीसगढ़ के किसान परिवर्तित फसलें भी ले रहे हैं, इसलिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी नैनो उर्वरकों की सही मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक आरएस राठौर कहते हैं,
1: ये जो नैनो तरल खाद आए हैं, मतलब नैनो तरल डीएपी और नैनो तरल यूरिया, ये तो नई तकनीक अभी तक की जो है, नैनो तकनीक जिसका कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है इसका, कि इसका आकार छोटा होता है लेकिन क्षमता ज्यादा होती है। तो उसी पद्धति पर या उसी तकनीक के अनुसार ये बनाया गया है नैनो तरल डीएपी। मैं देखने में तो मात्र आधा लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल एक बोरी के लगभग बराबर काम करती है, तो ये इसमें अंतर है। वैसे ही यूरिया की भी 500 ml की बोतल आती है कि यूरिया का काम करती है। जिस प्रकार से यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, उसी प्रकार से इसे तरल यूरिया या नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन नैनो फॉर्म में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दानेदार खाद भी उपयोगी है और तरल भी उपयोगी है। दोनों के अलग अलग अंतर हैं कि हम जो दानेदार खाद का उपयोग करते हैं वो पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन के माध्यम से करते हैं, कि हम या तो बोते समय जमीन में खाद देते हैं दानेदार डीएपी या एनपीके या सुपर फास्फेट जो भी खाद आते हैं उनको देते हैं, या हम बाद में खड़ी फसल में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति खड़ी फसल में वो भी जमीन के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो नैनो के तरल खाद हैं, वो नैनो तकनीक हमारे पौधों पर पत्तियों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, और वो पत्तियों के माध्यम से जो पोषक तत्व इसके माध्यम से मिलते हैं वो पत्तियों के माध्यम से घोल में अवशोषित करती हैं पत्तियां, और वो पौधों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में उनके में पौधों में प्रवाहित होते हैं, जिससे उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति होती। तो दोनों की कार्य पद्धति में अंतर है। एक समय वो था जब हमारे किसान भाई डीएपी एनपीके इन खादों का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन चूंकि हमारे देश की आवश्यकता, समझें कि जब हम विदेशों से अन्न आयात किया जाता था तब हम लोगों का पेट भरती थी सरकार, तो धीरे धीरे उसमें खाद की एक प्रमुख भूमिका रही है उत्पादन बढ़ाने में। तो जब किसान भाइयों को हमारे को ये समझ में आया कि खाद

0: डालने से उत्पादन बढ़ सकता है, तो धीरे धीरे वो डालते डालते अब वो एक सीमा रेखा से कहीं ज्यादा खाद का उपयोग करने लगे हैं। तो अंतर ये है कि दोनों में कि खाद जो बोरी वाला खाद या दानेदार खाद आता है, वास्तविकता ये है कि हमारे देश की जितनी खपत है प्रतिवर्ष की, वो हमारे देश में उसका उत्पादन उतना नहीं है। तो आज अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग 30 से 35% यूरिया हमारे पूरे देश की प्रतिवर्ष की खपत का विदेशों से आयात होता है, और अगर हम डीएपी की बात करें तो लगभग 60 से 65% हिस्सा जो है खपत का
1: जी
0: वो भी विदेशों से आयात, हम विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। ये
1: जी
0: इनका अंतर। अगर हम बात करें अगर उर्वरक की, तो जो नैनो खाद है वो नवीनतम तकनीक है, दानेदार खाद है वो पुरानी पारंपरिक तकनीक चली आ रही है, उसमें कार्य क्षमता कम होती है, नैनो की ज्यादा होती है। अगर हम बात करें रखने की या उसको लाने ले जाने की, तो किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है, एक तरफ आधा लीटर की बोतल और एक तरफ 50 किलो की बोरी, तो उसको वजन भी ज्यादा है, जगह भी ज्यादा चाहिए, गाड़ियों से ट्रकों में मालगाड़ियों में जो भर के आता है उसकी बहुत कम आवश्यकता होगी। और इसके साथ साथ हमारी भारत सरकार जो है इस पे अनुदान भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस अनुदान वाली मतलब बोरी को उपयोग करके और हमारे ही जल मिट्टी और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सरकार की सोच ये है कि हमारी भविष्य के लिए हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे, हमारा पानी भी सुरक्षित रहे, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसानों को समय पे और उचित मूल्य पे खाद मिल सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान प्रमुख फसल है और अभी धान की बुवाई अथवा रोपाई का काम चल रहा है। कुछ लोग सीधे धान की बुवाई करते हैं, कुछ लोग उसकी नर्सरी बना के उसकी रोपाई करते हैं। तो जहां हम सीधे बीज की बुवाई करते हैं उसमें 1 किलो बीज पर नैनो डीएपी की 5 मिलीलीटर मात्रा, मतलब 1 क्विंटल बीज अगर है तो उसको शोधन किया जाना है, बीज उपचार किया जाना है, उसके लिए 1 क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए आधा लीटर की एक बोतल पर्याप्त होती है। 1 किलो बीज के लिए 5 ml और 5 किलो बीज के लिए बोतल जो आती है उसका ढक्कन 25 ml का रहता है। किसान भाई साधारण भाषा में उससे भी समझते हैं कि 5 किलो बीज पर एक ढक्कन भर के नैनो डीएपी डालना है और उसको बीज में मिलाना है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी आवश्यकता अनुसार मिला के नैनो डीएपी में, फिर उसका छिड़काव बीज के ऊपर करके और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डीएपी, नैनो डीएपी का जो घोल है वो बीज के अंदर समाहित हो जाता है और फिर उसकी बुवाई कर दी।

0: छत्तीसगढ़ में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी कृषि के क्षेत्र में नवाचार की नई पहचान बन रहे हैं। बेहतर पोषण, दक्षता, कम लागत, आसान उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन के साथ ये आधुनिक उर्वरक खेती अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान सहित विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विकास खंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इफको के उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार गोले कहते हैं,
1: नैनो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी कदम है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम जितना डालते हैं उसका मात्र 40% यूरिया उपयोग होता है, 60% खेत में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से डीएपी और दूसरे खाद भी 25% उपयोग हो पाते हैं कि पौधों के द्वारा, बाकी खेत में पड़े रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। सभी ने अनुभव किया खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। खेत में जो लाभदायक जीवाणु थे, केचुए थे और दूसरे जीवाणु थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए अच्छा, जो ये पड़ा हुआ खाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल में, आज हम पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ये सब खाद जो है नाइट्रेट के रूप में पानी में जाके मिल रहा है, नालों में, ट्यूबवेल में, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटीज हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। 40% उपयोग होता है और 60% जो है पॉल्यूशन कर रहा है। उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमको पैदावार भी नहीं घटाना है और पॉल्यूशन से हमको निपटना है, बचना है। के लिए जो नैनो उर्वरक है ये सीधे

पत्तियों पे उपयोग होता है, और पत्तियों पे उपयोग होने से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाता है, जब जमीन में नहीं जाता है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जीरो है। तो ये किसान भाई कोई भी फसल जो 35 से 40 दिन की हो जाती है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या दूसरी जो भी साग भाजी है, जब पर्याप्त पत्ती आ जाती है तो इसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या मोटी भाषा में कहें एक टंकी जो 15 लीटर की, ढाई ढक्कन नैनो यूरिया मिलाकर उस पर स्प्रे कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आज किसान समझ चुके हैं कि बिना किसी नुकसान के नैनो उर्वरकों को अपनाकर वे अपनी उपज का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के किसान अपनी फसलों के लिए अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का चुनाव करते हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि दानेदार खाद से प्रदूषित हुई मिट्टी अब उपजाऊ हो रही है और साथ ही किसानों की झोलियां भी धनधान्य से भर रही है। और ये सब हो रहा है किसानों के प्रति सरकार के समर्पण के कारण। इसीलिए तो परस्पर आस्था और विश्वास लेकर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए।
2: अभी आप सुन रही थी प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रही थी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 10:30 हुए हैं, लीजिए श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने शुरू करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। श्रोताओं, फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को 10:30 से 11 बजे तक की जाती है। हम आपको बता दें श्रोताओं कि हमारा फ़ोन नंबर 266592 काम नहीं कर रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दूसरे फ़ोन नंबर 3100026 पर फ़ोन अवश्य लगाएं। और हाँ, फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 लगाना ना भूलें। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का रहेगा इंतज़ार। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। और कार्यक्रम नए तराने में हम आपको सुनवाते हैं पहला तराना फाइटर फिल्म से। आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा, शिल्पा राव, विशाल डडलानी और शेखर राव जियानी की। गीत लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं तेजस फिल्म का गीत। आवाजें हैं रश्मि कौर, शाश्वत सचदेव की। गीत लिखा है कुमार ने और धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।
4: ओ दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई, ओ दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई।

0: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को 10:30 से 11 बजे तक की जाती है। हम आपको बता दें श्रोताओं कि हमारा फोन नंबर 266592 काम नहीं कर रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दूसरे फोन नंबर 310026 पर फोन अवश्य लगाएं। और हाँ, फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 लगाना ना भूलें। हमें आपकी फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम में बारी है ट्रैफिक अपडेट की, पुनः प्रसारण की, तो आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, दैनिक रेडियो कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कों के साथ ही शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग सहित सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहन दौड़ रहे हैं। जिले का शेष भाग से इन सड़कों के माध्यम से यातायात संपर्क बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज के परिवेश में जब सभी सड़कों में विभिन्न प्रकार के वाहनों की कतार लगी हो, ऐसे में सुरक्षित चल पाना एक चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें यातायात के नियमों की जानकारी हो और इस जानकारी के प्रति हम सभी की वफादारी हो। दोस्तों, हमारी नई पीढ़ी अर्थात हमारे बच्चे

इन्हें यातायात नियमों की जानकारी देना या इन्हें इन नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना हम सबका दायित्व है। शासन स्तर पर इन्हें इस दिशा में तैयार करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, किंतु परिवार बच्चे की पहली पाठशाला है। बच्चा पहले सब कुछ अपने माता पिता से ही सीखता है। कहने का आशय यही है मित्रों कि आप हमें

0: पहले सब कुछ अपने माता पिता से ही सीखता है। कहने का आशय यही है मित्रों कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने वही करें जिसका बच्चा भी अनुसरण करे, अनुकरण करे। जैसे अधिकांश घरों में लोग दो पहिया वाहन से ही किसी न किसी कार्य से आना जाना करते हैं, अतः घर से दो पहिया वाहन की चाबी उठाने से पहले हेलमेट उठाएं और प्रयास करें इस हेलमेट को अपने बच्चे से ही मंगवाएं। परिवार के सदस्यों या मित्र, दो पहिया में तीन सवारी कभी न चलें। आप कार में हो या दो पहिया में, मोबाइल की घंटी बजते ही वाहन खड़ा करें और बातें करें, ना कि वाहन चलाते हुए। इसे आपके साथ वाहन में आपका बच्चा भी देख रहा है। रेड सिग्नल के दौरान अंतिम सेकंड तक इंतजार करें और रॉन्ग साइड जल्दी के चक्कर में कभी न चलें, यह सोचकर कि सब चलता है, क्योंकि यह भी आपका बच्चा देख रहा है। अपने वाहन की गति हमेशा सीमित रखें, आपका यह प्रदर्शन बाल मन में अमिट छाप होगा। तब होगी आपकी और नई पीढ़ी की हर यात्रा शुभ और सुरक्षित।
1: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है सेम बहादुर।
2: इसी बात

ऋचा शर्मा और जावेद अली की आवाज़ों में अभी आपने सुना मैदान फिल्म का गीत। गीत लिखा था मनोज मंतसिर ने और धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665 और 3100। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आश्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं जुबिन नोटियाल की आवाज़ में 1.5 बीघा जमीन फिल्म का ये नगमा। गीत और संगीत आरको का है।

कार्यक्रम नए तराने का अंतिम तराना लीजिए पेश है सत्यदेव की प्रेम कथा फिल्म से। आवाजी हैं विशाल मिश्रा और पायल देव की। गीत के बोल लिखे हैं AM तुराज ने और धुन बनाई है पायल देव ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन की 11 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने।
2: साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू,
3: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
3: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
3: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
2: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
3: जी,
2: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
3: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
2: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है
3: जी,
2: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
3: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
2: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
3: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
2: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
3: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
2: जी जी।
3: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
2: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
3: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
2: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
3: जी,
2: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
3: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
2: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
3: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
2: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और

0: प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
6: क्या
4: क्या?
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: नीचा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा, मुझसे बतियाने से पहले अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
6: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
3: का का का।
7: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: ने तो बस रट ही पकड़ ली।
1: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
0: अरे
1: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
0: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
2: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
1: इसकी यही सजा हो,
3: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
0: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
4: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
5: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
5: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
4: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
4: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
5: हाँ मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।
6: हाय हाय।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: जाए, बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई,
3: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:31 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने रामगढ़ महोत्सव के 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री निवास में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित झिरमिटी स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर वे रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे खरसिया रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। कल रायपुर में इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गांव गांव तक सशक्त किया जा रहा है और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ओवरब्रिज पर 2 मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में सड़क पर गिरा एक युवक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर मार्ग बाधित हो गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए

राहगीरों को एम्स महबूबा बाजार मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य सचिव से पहचान होने का झांसा देकर नौकरी लगाने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने 7 लोगों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है।

0: इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलो को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बाबरा का लिखा ये गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंगरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए, इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर। उधर जा निकलती जहां पत्थरों पर, धड़कते हैं दो दिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर, कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत

ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें, समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वाह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माय प्लेलिस्ट इज लॉन्गर टुडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस, छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गजल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहाँ हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मन चाहा साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है, और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन भी रहे और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर, देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहां से सीपियां इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया

हमें जरूर बताएं और कहाँ गए हैं। अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें जरूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई कन्याकुमारी की बात की है, जो कि तीन तरह से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है। ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतजार हो रहा है, जरूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े, वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारे पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी। वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल, और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीजों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा खास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज तेज हवाएं बहती हैं?

बारिश के समय में, अगर याद हो तो वो जरूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं, और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणी च पाणी चहुड़ के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाई बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार, मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं, आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर। तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर, समुद्र के किनारे की पिक के साथ। तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते। तो जवाब में उसने लिखा, आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से। फिर हमने लिखा, अरे नहीं, हम विविध भारती सुनते हैं ना। तो उसका रिप्लाई, सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में। तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे, वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है। भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है, मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी।

एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूँ तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूँ, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर

दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है, क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है। जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नजारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियां इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियां मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता राज का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहां तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई। वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था। एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूं। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है, समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं, वहां आज भी दो दिल एक ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं लहरें जिंदगी के सफर में।

में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म, और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज शायद दरिया अंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा। बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारे किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है। यथार्थ में तो वो सागर का अंश

मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफर तय किया, सुरीला सफर। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना? जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा रात, तो फिर हमको तो नशा है।

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में, मरना भी है मुझको कबूल।
0: तो मरेगा?
1: हाँ जी मरेगा।
0: ये जो कहेगी करेगा?
1: हाँ जी करेगा करेगा।

0: ए हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब, आहे पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब।
1: शौक कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है, और करते करते लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो थोड़ी देर किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी। तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या

0: 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।

0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली

0: चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 20 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: की सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है। बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक, के। एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: अरे कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला कि खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का निगल लेते हैं, तो इस तरह की शरारत

0: आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए, साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को, और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना।
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब
0: जी
1: कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम
0: कि
1: पानी पानी हो जाते
0: माता
1: हैं।
0: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
1: पोल खोल देते हैं, सही बात है।
0: सबके।
1: वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा आ
1: तो
0: जाता है।
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए ए

0: तक सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते
1: यानी
0: हैं।
1: झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने माहवारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना, एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है। पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है और उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की।
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या होगा?
0: क्या होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का,
0: बहुत
1: हाइजीन
0: ध्यान
1: का तो
0: रखना है,
1: बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का, कपड़े बदलना चाहिए, और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना
0: और अब
1: बहुत
0: तो इसके
1: जरूरी।
0: विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की
1: जी
0: तरफ से भी बहुत पहल हो रही है। मुफ्त में पैड्स
1: दिए
0: गांवों में
1: जाते।
0: दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है। तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति, शक्ति कहा
1: जी
0: जाता है ना, तो
1: जी
0: शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी
1: जी
0: जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती हैं।
0: प्रूव करती, प्रमाणित करती हैं
1: जी
0: कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी
1: जी
0: से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं। तब गंदगी नहीं रहती जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है। बहुत जगह ये भी
1: उस
0: होता है।
1: वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं। देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ हाँ और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी
0: हाँ
1: सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें, नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या

0: की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा यह आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब
0: हाँ
1: मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं लेती।
0: नाम नहीं लेती और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: सहेली।
1: और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहलवश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा।
0: ओह
1: पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें
0: हाँ,
1: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया था।
0: बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: चोट
1: खतरा।
0: भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। ओ, तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया करो।
1: हाँ, कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे। हमने बेल बजा दिया, फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट
0: अरे
1: देगा।
0: बाप रे।
1: यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
1: जी
0: भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा
1: खोल लिया
0: पुर्जा बराबर कर देता था।
1: उसने।
0: उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
1: खोल
0: उसको
1: देता
0: चाहिए
1: था।
0: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूं मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: इंजीनियर बना।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: भाई ये कुछ
1: यानी
0: चीजें
1: उन्हें
0: होती
1: रोकी
0: हैं।
1: टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे,
0: हाँ
1: क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं,
0: हाँ
1: तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं

0: हाँ, पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना, ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो, या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते
0: वो
1: हैं,
0: लगा सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, या फिर ऐसे इसको,
1: कागज लगा दे,
0: हाँ
1: एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
0: हाँ वो
1: लगा दे
0: लगा
1: और
0: दे।
1: कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत
1: तो
0: होती है।
1: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के
1: हाँ
0: बाल ही काट देते हैं, कभी
1: हाँ
0: कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते
1: हाँ
0: हैं
1: या
0: बच्चे,
1: छोटे भाई बहनों के काट देते हैं।
0: हाँ, तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो
1: हाँ
0: उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब
1: हाँ
0: उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली
1: चली
0: जाती,
1: जाती।
0: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: ये गाने में है।
1: हाँ।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: हाँ
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं, कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूत ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी विकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई
1: लग
0: है।
1: गई है।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है, और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी,
0: बिल्कुल
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
0: परेशानी है, और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो भाई इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप
1: जो
0: कर
1: रह
0: लेते
1: गया
0: हैं,
1: है।
0: हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है,
1: जी
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस

0: होगा।
1: हम्म,
0: ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है
1: पर
0: उनके
1: अगर
0: पास।
1: ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता नहीं कि अरे वो बात नहीं करे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए।
0: तरफ से होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।
0: ओ सजना,

0: पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है।
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात है।
1: आपकी। वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी

0: बेटी थी तो अब क्या बात करें बच्चे से। तूने पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
1: सब पोल
0: हैं,
1: खोल दी।
0: सब पोल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने
0: हाँ
1: काम का मतलब यही
0: ये
1: समझा
0: समझा
1: कि
0: कि
1: हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा
1: सब
0: लिया।
1: खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे, छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
0: जी।
1: वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने कि भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा का, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख
1: देख लिया
0: लिया।
1: तो पानी पानी हो गए।
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे
1: बिल्कुल
0: वही छोड़ देना है कि वो ठीक
1: हाँ
0: है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें, स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं
1: फिर
0: आते।
1: से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है।

0: आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र
3: ये
4: किया
3: दर्ज
4: जाए।
3: होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप। बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ,
4: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब के
3: तो, सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ,
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ,
4: ठीक है,
3: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
4: हाँ, तो उसमें जो गाना है। हाँ, वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपस

0: सी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है,
1: जी जी
0: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूं।
1: अच्छा, क्या बात है कि
0: ठीक
1: सारा कुछ एक गाने में
0: हाँ, तो
1: आना।
0: तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी।
1: जी,
0: हाँ
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है
0: हाँ
1: तो।
0: इसी इसी तरह से बनी वो, कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह
0: है
1: वाह, बहुत
0: ना,
1: सुंदर।
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी
1: हाँ
0: राइमिंग की
1: जी
0: लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत
1: विविध
0: बड़ा मुल्क है
1: विविधरंगी है।
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है
1: बिल्कुल।
0: ना, कुछ नया लगता है। जब तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
1: जी
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की
1: रेजगारी
0: रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना वो।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समाए हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे और ऐसा, फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो
1: जल्दी। और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ,

0: और महबूब भी है हमारा, ठीक है,
1: हाँ
0: डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर
1: बिल्कुल
0: जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल, दो अर्थी
0: तो
1: है।
0: हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, है
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: ना। तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे।
1: रंग दिखाई
0: हाँ, अलग
1: पड़ेगा।
0: अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है, भई
0: सातों से मिलके
1: में
0: भई मैं
1: उजली,
0: उजली,
1: वाह वाह
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात
0: पिया
1: है।
0: समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूं,
1: जी जी
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई। बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी
0: हाँ
1: संदेश देता
0: हाँ
1: है, एक
0: बिल्कुल
1: सब एकजुटता का
0: बिल्कुल
1: संदेश है,
0: बिल्कुल
1: और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: एम एम क्रीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना।
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब
0: आप
1: आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ,
0: बताएं।
1: प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा
1: है
0: भट्ट।
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात
1: है ना। हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी, तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था। ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक

0: बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर
1: जी जी
0: है ना,
1: जी
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
1: जी जी
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहाँ, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी।
0: जी।
1: तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं
0: हाँ।
1: ये गाना।

0: कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों,
0: जी जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरी हरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे।
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।
0: जी जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
1: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन, समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ।

0: तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहां तनवीर खान भी के
0: हाँ हाँ
1: राइटर
0: हाँ
1: थे।
0: हाँ हाँ हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो
1: जी
0: किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नज़र उस किताब पर पड़ी,
1: जी
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओह क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई
1: जी
0: आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे,
1: जी
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
1: जी
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी ज़माने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी। तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे,
1: जी
0: बाद
1: जी
0: में डायरेक्टर भी
1: जी
0: बने।
1: जी जी
0: तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुक्कू कोयली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे? तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर
1: कंपोज कर
0: लिए
1: लिए
0: थे
1: थे।
0: और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई। तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है,
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी
0: था।
1: दिलचस्प कहानी बनाई
0: हाँ,
1: आपने।
0: मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं
1: क्या
0: कि
1: बात
0: गजल
1: है।
0: बाद में, गाना बाद में बना,
1: जी।
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी, उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी।

0: के साले। तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: खूब। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया।
0: हाँ।
1: उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है,
0: तुलसीदास
1: की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे जाते,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है।

0: रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है। उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से, मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है।

0: कम है, आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर अंदाज में आप कहे, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले, शेर के साथ
1: जी
0: कोई अशार।
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके दो तीन शेर सुना देता हूँ। और उसमें एक शेर है खास तौर से, उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ,
0: क्या बात है,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़ें, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर,
0: क्या बात है,
1: सांपों को मैंने रहने दिया
0: उनके हाल पर,
1: उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: ठीक है, मैंने उससे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
0: जी,
1: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है,
0: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह,
1: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
0: जी,
1: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
1: आप भी बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, पहली जुलाई

0: से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके
3: विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, अमड़ी, जमीरा, मसगाट, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, ससकालो, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, घड़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, दांती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, साजापानी, गट्टी बुड़ा, हल्दी मुंडा, ढोड़ा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 126 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोड़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार,

0: वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोड़।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन रहे थे। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए चलते हैं किसानवाड़ी में।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनिया जमो बहनी भाई बनला वीरू भैया के राम राम जय जोहार संगवारी हो भाई बहनी हो। अब देखो पानी अगोरत है ना, पानी के जिन गिरई है वह अब चालू हो गए है, धीरे धीरे सबो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाए। किसान भाई हो, जब पानी है गिरते है तो एक संदेश लाते है कि किसान मन सचेत होना है, अपन खेती किसानी तरफ हमला अब ध्यान देना है। कह मतलब हमला तो जीवन भर खेती किसानी करना है संगवारी हो, फिर अपन खेती किसानी में हमला का अपनाना चाहिए का नहीं अपनाना चाहिए, काखर मात्रा कम काखर मात्रा ज्यादा, यानी कि कहे मतलब है अपन फसल के उत्पादन ला हमला साफ शुद्ध रखना है, जिन मनखे मन के खाए के लायक काबिल रहे और उखर स्वास्थ्य ला बढ़िया रखे, आयु जिन्हें दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। तो ये सब बात के हमला ख्याल रखना है। एक पहली हमन जैसन के रासायनिक खाद के बहुत ही उपयोग कर रहे और करत रहे, जेखल उत्पादन तो मिलत रही, मगर उत्पादन में जिन प्राप्त रूपया पैसा रही से वह स्वास्थ्य में खर्चा होत रही से, घर और घर के मनखे होए लैका होए सियान होए आनी बानी के तकलीफ व्याधा जिन्हें बढ़त जात रही से, जिन अक्तहा पैसा मिलत रही से वह जमो पैसा हमन के स्वास्थ्य ल बढ़िया रखब में खर्चा होत रही से, कुल मिला के जिन जतका किस्मत में रहत रही से मिलना रही से वह मिलत रही से। कहक मतलब है अब हमला अपन जीवन का संवालना है, जीवन ला सुघर बनाना है। हमर सियान मन कह रही सब है जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, यानी कि अन्न के जिन प्रभाव है हमर शरीर के यानी कि स्वास्थ्य के संगे संग सोच विचार रक्त विकार मज्जा विकार ये जिन होते वो सब अन्न के ही कारण होते। तो अन्न हमला ऐसा लेना है शुद्ध साफ और जमा रासायनिक खाद की मात्रा कम रहे। हम कहतन कि आप मतलब जैविक खेती करना है किसान भाई हो, जैविक खेती के कहे मतलब प्राकृतिक खेती, जिन प्रकृति प्रदत्त है, जिन प्रकृति में है मिलत है और प्रकृति में घुल मिल जाते उखर हमला खेती करना है। आज के जिन खेती है रासायनिक खाद है ना और रासायनिक जिन कीटनाशक प्रयोग बहुत बढ़ गए, अपन देखत हो कि हम प्रकृति से बहुत ही खेल कर डरे हन, कई प्रकार के चिड़ई चुरगुन आनी बानी के जिन जीव जंतु दिखत रही से खेत खा जाते, तो बढ़िया करही के पेड़ परसा के पेड़ मा चिड़ई मन आनी बानी के आवाज निकाले और उखर आवाज सुन के मन गदगद हो जाए, काबर

मुखर संगीत जिन्हें प्रकृति के संगीत रही से वो संगीत सुन के मन चंगा हो जाए, तो आज ये जिन दुष्परिणाम देखे मिले थे वो जमो जिन रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग के खातिर है। पहले के सियान मन जिन्हें जैविक खेती करे, गोबर खाद डाले, कंपोस्ट खाद डाले, जिन कहे मतलब जंगल झाड़ी में जो डारा पना हो जाए वो सड़ा के गला के बढ़िया भुरभुरा खाद बना के और वो खेत में डाले, जेखर से जिन माटी की उर्वरा क्षमता है वह बरकरार रहे, बढ़े रहे और उखर जेन उखर से अन्न जेन मिलत रही से वो अन्न के स्वाद और सुगंध आप अभी भी जेन 40 साल 50 साल के जेन हो या 60 65 साल के उमन अनुभव करत हो कि पहली जेन दुबराज खेत में अगर दुबराज धान लगे है कटे के बाद भी खेत में रिंगते तो ममहावे पताल के चटनी हो चाहे राहर के दार हो कोई घर चूरा है तो गली ले ममहावे धनिया हा अगर वाला खेत में रेंग देते तो बिल्कुल घर के आत लम्हाई है नहीं छोड़ इसे। और अब आप मन जीवन में देखत हो अभी के कोई में स्वाद नहीं है न सुगंध, ये मात्र एक कारण है ज्यादा उत्पादन पाए के चक्कर में हम रासायनिक खाद के प्रयोग करत हन, कीटनाशक के प्रयोग करत हन और प्रकृति हमला सिखाते संगवारी हो प्रकृति के संग चले मा प्रकृति के संग रहे मा जीवन है समर्थ बिगड़े नहीं, नहीं तो फिर प्रकृति एक दिन अपन खुद वो निर्धारण कर लेते कहे जाए अपन आप ला, है ना। तो हमला कहे का मतलब है आप मल्ला किसान भाई हो अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती ला अपनाना है जेखर ले माटी के सेहत ध सुधर ही केचु अमन जिन लाभदायक सूक्ष्म जीव है उपमा बढ़वा रहा है, जमीन की उपजाऊ शक्ति है बने रही और खेती जिन करत हन साग भाजी जिन लेते ना फिर रासायनिक में ना 2 दिन घर में नहीं रखे सकन, फ्रिज भी में रखे हो तो वो गल जाते सड़ जाते भाजी असन ला देखो पहली भाजी है सुखा जाए फिर सड़त गलत नहीं रही से जिन कंपोस्ट खाद ले प्राकृतिक खेती करत रहे मगर आज बजा ले लावा 2 दिन वाला हाथ तो एक दिन सिरावा ऐसे हो जाते। तो ये सब वही कारण है काबर वहाँ ऐसे तत्व है जिन हमका गला देते, हालांकि कुछ समय तक हरियर बने रही थे ताजा दिखते मगर कोहिन रख देवा इसने सोचे तही ला जाते मुरझा जाते फिर स्वाद खाए के लिए नहीं रहे। तो आप सब अनुभव करत हो अपन जीवन में पहली के जीवन अभी के जीवन में कतेक अंतर है एल आप सब जाना था किसान भाई हो, तो हमार बार बार आप मन से विनती है अर्जी करथन कि आप मन जैविक खेती करो अवैया लेकिन के पीढ़ी ला सुघर राखो, जब हमारे लेकिन बच्चन स्वस्थ रही सुंदर रही तो उखर जीवन जिन्हें दीर्घायु हो है। अब आप मन हम सुनावथन एक कार्यक्रम स्तर रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव ग्राम बहराडी जिला जांजगीर चांपा मा और यहाँ के किसान मन के बीच में जिन रिकॉर्डिंग हुए ध्वनांकन हुए संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के है और रिकॉर्डिंग संपादन हमार अभिनव भाई जीतू भाई के है, तब सुन लेते हैं।

0: जय जोहार। प्रस्तुत हवा दिनांक 26 जून 2026 के ग्राम बहेराडी जिला जांजगीर चांपा में आयोजित राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के रेडियो रिपोर्ट। किसान भाई हो, वैसे तो हमर छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु अतका सुघर है, अतका बढ़िया है कि यहाँ भारत के हिमाचल से लेके तमिलनाडु तक के जौन भी फसल होते तेन हमर छत्तीसगढ़ में उगाए जाते। चाहे यहाँ के लीची के बात करी, चाहे बस्तर में उपजाए हुए आनी बानी के मसाला फसल की बात करी, हमर राज्य के हर जिला कुछ न कुछ जिनिस पर प्रसिद्ध हवा। हम जानथन के हमर पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा कोसा हब के नाम से जाने जाते, और आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पुटू ला लेके बढ़िया खेती किसानी घलाव करत है। यही क्रम में बहेराडीह जिला जांजगीर चांपा में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के आयोजन करे गए रही से। यहाँ तीर्थखार के और आस पास जिला के कतको मशरूम उत्पादक किसान मन पहुंचे रहिन हैं अपन अपन जिनिस ल लेके। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिनिधि मन घलव आए रहिन हैं। यही क्रम में हमर गोठ होइस मशरूम महोत्सव में पहुंचे किसान मन सो, आवा उखर अनुभव ला जानत हैं।
1: भैया राम राम।
2: राम राम।
1: का नाम है आपके?
2: मोर नाम दिनू सुमन पटेल है।
1: अच्छा पटेल जी, कहाँ के रह भैया आप?
2: मैं अपन बमझिंडी ब्लॉक के ग्राम मोहाड़ी है, सिलादेही ग्राम पंचायत के अंतर्गत।
1: अच्छा,
2: वही के मैं निवासी हूँ।
1: तो आप मन भी मशरूम के खेती करता?
2: हाँ।
1: तो कतका दिन हो गए जी?
2: लगभग

0: 7 साल हो गए सर।
1: 7 साल हो गए।
0: हाँ।
1: कौन सा मौसम में ज्यादा उत्पादन होते? हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम होते।
0: हाँ। जैसे हम सीजन वाइज अगर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, जैसे हम मानसून के सीजन ले ली जून से लेके हम अक्टूबर या फिर नवंबर तक, जब तक ठंड ना बढ़ जाए तब तक हम पैरा मशरूम आराम से उगा सकत हैं।
1: मतलब वो वाला आर्द्रता चाहिए।
0: हाँ, आर्द्रता चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए। पैरा मशरूम ऐसे जला हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, 28 से 38 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ते है पैरा पोटूला, और नमी भी लगभग 80 से 90% नमी की जरूरत पड़ते है। ओकरे लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के मशरूम पैरा मशरूम। ओकर बाद जैसे ठंड शुरू हुई ओकर बाद हम ऑयस्टर शिफ्ट हो जाइए। ऑयस्टर मान लो हम नवंबर से शुरू करते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक पूरा कर सकते हैं, फिर अप्रैल महीना 2 महीना गैप दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मन के व्यवस्था है, फॉगर सिस्टम है या फिर ह्यूमिडिटी मेंटेन करे व्यवस्था है, फिर कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर 2 महीना रेस्ट दे के अपन फार्म के जो मेंटेनेंस है या फिर थोड़ा रेस्ट दे के ये सब चीज काम कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी।
0: धन्यवाद।
1: राम राम। जय जोहार।
0: जय जोहार
1: भैया। राम राम।
2: राम राम भैया।
1: क्या नाम है आपके?
2: शिव प्रसाद पटेल है।
1: अच्छा पटेल जी, आप कहाँ के रह भैया?
2: हमन भद्रापारा बालको नगर कोरबा छत्तीसगढ़।
1: अच्छा, आप मन यहाँ कैसे आया?
2: ये मशरूम के हमन के मतलब उत्सव है।
1: हाँ।
2: तेकर लिए हमन आए हुए हैं, हमला निमंत्रण दे गए रही से।
1: अच्छा।
2: तेकर लिए हमन आए हैं।
1: अच्छा, तो मशरूम के व्यवस्था से जुड़े हैं का आप मन?
2: जी जी, मशरूम की व्यवस्था से हम लगभग 2013 ले हम जुड़े हवन।
1: अच्छा, मतलब 10-12 साल हो गए।
2: हाँ, 10-12 साल हो गए। मशरूम के ट्रेनिंग भी देता ना और उत्पादन भी करता।
1: तो कैसे शुरू से आप मन जुड़े हैं, कौन बताए, कैसे मन में विचार आए?
2: सबसे पहले हम सोचत रहे जे समय 12वीं पढ़त रहे ते समय कि कोई ऐसे हम बिजनेस चाहिए जे हम के कम समय में हो, ज्यादा मुनाफा हो और जे में कम लागत हो। और बहुत सारा सब्जी ले देखें, खेती ले देखें, तो और जो भी भिंडी है, गोभी है, टमाटर है, वो बहुत ज़्यादा दिन लगे। तो ओकर बाद सोचा सोचा सोचा मशरूम दिखी, पैरा मशरूम बहुत जगह बेचाए तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा स्वाद भी रहे। हमन के जो पैरा रहे गाँव में ते मन निकले तो मन बनाए तो बहुत ज़्यादा स्वाद एकदम
1: देसी वाले।
2: हाँ, देसी वाला। तो फिर देखा जब भी कोई भी एक टुकनी लेके आए या एक झोला लेके आए तो तुरंत खत्म हो जाए और बहुत ज्यादा महंगा रहे, 400 रुपए
1: बरसात के सीजन में।
2: हाँ, बरसात के सीजन में। तो ओकर बाद फिर दिमाग लगाए कि ऐले उगा लिया जाए पैरा मशरूम की खेती के लिए। फिर ओकर बाद में सर्च करे शुरू करें सब जगह। तो 3 साल तक हमन खाली सर्चे करत रहे,
1: खोजत
2: रहे, इतनी ट्रेनिंग लेवन उती जान इतनी जान, लेकिन सीखे ले नहीं मिलेगा।
1: प्यासा है कुआं ला खोजत रहे
2: जी। हाँ।
1: तब फिर आपके प्यास दूर कब हुई?
2: वो तो हमन के 3 साल तक घूमते रहन खाली कि बोलन कोई ले सिखा दे, कहते सिखाए बता या नहीं हो मतलब। और जे जगह भी जान सीखे बताई जगह समझो, पढ़े लिखे वाला सिखाए तो फिर वहाँ पढ़े लिखे वाला हो जाए। तो लगभग हमन के ना 2017 में समझ जाओ, 2017 से हमन फिर करे ले चालू करें।
1: अच्छा, शुरुआती व्यवस्था करे में का का चीज ला अपन ला जरूरत पड़ी?
2: सबसे पहली तो हमन ला खेती हमन कर नहीं है, खाली हमन सब्जी भाजी लगा था, तब पैरा के जुगाड़ करें पहली हमन।
1: अच्छा, एक चीज पूछो, कोनो प्रकार के भी मशरूम लगावा पैरा सब में जरूरत पड़ी?
2: पैरा सब में जरूरत पड़ी, काबा की जो वास्तविक जो माइसेलियम है ना मशरूम के, तेला हम मतलब पैरा से ही मिल पाते अच्छा से, और वही आसानी से हमन के भारत में मिल भी जाते हैं।
1: कई जी कहते कि भाई जिन क्षेत्र में, अब हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा पैरा होते हैं, जांजगीर चांपा क्षेत्र वैसे भी धान पर सबसे ज्यादा उत्पादन देते है ना।
2: जी जी।
1: तो कतको जगह सुने हो कि गेहूं के भूसा में भी करे जाते?
2: गेहूं के भूसा में थोड़ा नमी के मात्रा ना कम रहते, काबा के थोड़ा कड़ापन रहते ना, तो नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाए ज्यादा। तो ऑस्टर मशरूम उगा सका थे।
1: अच्छा,
2: ऑस्टर मशरूम उगा सका थे, बटन मशरूम के लिए खाद भी बना सका थे।
1: तो जिन उत्पादन करते प्राकृतिक रूप ला छोड़ दी, तो कौन कौन सा प्रकार के कतका प्रकार के मशरूम होते?
2: प्राकृतिक ला अगर छोड़ दे बोला तो 4 प्रकार के मशरूम खाने योग्य है, मतलब जिला हमन उगा सकत हन।
1: कौन कौन सा?
2: ये हमन के बटन मशरूम हो गए, पैरा मशरूम हो गए, मिल्की मशरूम हो गए, ऑस्टर मशरूम हो गए। लेकिन हमन के सबसे आसान जो हमन के जीवन नॉर्मल जो घर के महिला भी कर सकते हैं, हमन के एकदम नॉर्मल गरीबी स्थिति में भी शुरुआत करना चाहिए, तो 2 मशरूम है, ऑस्टर मशरूम और पैरा मशरूम, जिला आसानी से शुरुआत कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: और सबसे कम दिन में होने वाला मशरूम 10 दिन 12 दिन 15 दिन में तैयार हो जाइए, और दुनिया के हमन के कोई सब्जी हमन के तैयार नहीं हुआ।
1: और
2: रेट तो सबसे ज्यादा महंगा है, मतलब कम दिन में होते, मतलब 300 400 500, रायपुर में हमन के 1000 रुपये किलो भी बेचता है।
1: जैसे रेट के बात करें चारों मशरूम में सबसे ज्यादा रेट का करे
2: पैरा मशरूम के और सबसे कम दिन में होते वो।
1: अच्छा
2: सबसे कम दिन में सबसे कम लागत
1: कै दिन में कतका बड़ क्षेत्र में कतका किलो हो जाता।

0: मतलब बढ़िया खुराक बतावा।
1: जैसे हमन
0: उदाहरण स्वरूप,
1: उदाहरण के लिए हमन 10 बेड लगा थन, ठीक है, 10 बेड में हमन के लागत लगभग 300-400 रुपए।
0: बेड के साइज का रही थे,
1: बेड के साइज हमन के अलग अलग साइज भी रहते, 10 बंडल के भी बना सकते आदमी, 13 बंडल के भी बना सकते, हमन बना था 17 बंडल के।
0: ठीक,
1: 17 बंडल में जैसे हमन के एक बेड में अगर हमन के लगभग लागत हमन के 40 रुपए 50 रुपए आते, अगर घर में खुद के रपैरा है तो लगभग 35 रुपए खर्चा ही,
0: बस
1: हाँ 35 रुपए खर्चा ही। अगर हम अच्छा से अगर नॉलेज हावे वाला, अच्छा से अगर देख रेख करते, अच्छा से अगर नमी बना पाते तो आराम से वह 1 किलो उत्पादन कर सकते है।
0: एक किलो के पैरा के रेट का चल रही
1: 300-400 रुपए, 300 रुपए किलो में बेचता हम थोक में,
0: मतलब वो 250 रुपया के आप मतलब फायदा हो गए। कई दिन में हो गए
1: वो? 8 से 10 दिन 12 दिन में,
0: मतलब सबसे जल्दी उत्पादन हो गया भाजी से भी कम दिन में।
1: भाजी कुछ भी चीज से, मतलब मशरूम से कोई भी चीज नहीं है, मतलब धनिया भी यहाँ तक के मेथी पालक कुछ भी नहीं है, समझ जाओ जो अधिकतम हमने मानता है 15 दिन की खेती,
0: 15 दिन
1: में मतलब खत्म हो जाते हैं।
0: आपके कहाँ नाम है?
2: मोर नाम सर उत्तम पटेल हवे।
0: कहाँ के रहे भैया आप?
2: मैं सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के।
0: बिलासपुर ले यहाँ आया ना?
2: हाँ बिलासपुर ले, आज जो मशरूम महोत्सव हो थे राज्य स्तरीय, उसमें यादव जी के निमंत्रण में हम यहाँ पहुँचे हवन।
0: आप भी लंबा समय से मशरूम उत्पादन से जुड़े हुए हैं, लोगन ने ट्रेनिंग देते था एकर जानकारी बढ़िया देवा, कब से आप मन शुरू करे है, कैसे शुरू करे, कैसे मन माइस?
2: तो जीतू भाई हमला जो मशरूम के खेती करते हुए लगभग 10 से 12 साल हो गए, 2014-15 से हमन जो है मशरूम के खेती करत आथन। सबले पहले हमन शुरुआत करें मशरूम खेती के, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में पैरा पोटू जो है सबले ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, लोग मन जानते हैं, कभी पैरा पोटू हमन बचपन से जाना था, जब हम पैरा पोटू की खेती नहीं करते रहें पहली बार पैरावाट में बरसात के दिन में ऑटोमेटिक निकल जाए तो सुबह सुबह मन का है पैरा पोटू ले भर जो है चल देवन, ठीक है। तो हमन देखें कि भाई पैरा पोटू जो है प्राकृतिक रूप से जब प्रोडक्शन होते ओला हमन कृत्रिम रूप से भी जो है प्रोडक्शन करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो क्यों ना है कि एला थोड़ा सा मन आय के अपन साधन बने, और धीरे धीरे हमन एक क्षेत्र में जो है रिसर्च करे गए कृषि विज्ञान केंद्र ले और अलग अलग जगह लेकर बारे में जानकारी पता करे गए, तो फिर हमन जो है पैरा मशरूम की खेती चालू करें। पैरा मशरूम के बाद अलग अलग जो मशरूम रही से, जैसे कि आप मन के ऑस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, मिल्की मशरूम है, कुछ मेडिसिनल मशरूम हवे, इमन के बारे में धीरे धीरे पता करें, और आज के समय में 5 से 6 प्रकार के मशरूम के हमन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हमला जरूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ तो लैब होना चाहिए। एक्चुअल में होते का जीतू भैया कि जो मशरूम रथे ओकर जो बीजा रथे वो बीजा ला ऐसे नॉर्मल बीजा नहीं रहे, मतलब ओकर बा फफूंद यानी कि मशरूम जो रहते ओकर स्पॉन बनाए जाते, जैसे आप मन के केला के देखिया कि टिश्यू कल्चर तैयार किया जाते, ठीक उसी प्रकार से हमार जो मशरूम रहते ओकर जो बीज रहते ओकर भी टिश्यू कल्चर तैयार किया जाते। तो आज के समय में हमारा महसूस हुई कि भाई हमारे आस पास में कोई बढ़िया ढंग के लैब नहीं है जो हमारे बढ़िया क्वालिटी के बीज दे, तो 2020-21 में कोरोना के बाद में हमन जो है हमारे खुद के बिलासपुर मशरूम लैब नाम से मशरूम स्पॉन लैब की स्थापना करें, जिसमें आज हमन 4 से 5 प्रकार के मशरूम के बीजा बनत हन, लगभग हर महीना 30 से 40 जी किसान ला हमन जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करत हन। हमार कुछ ट्रेनिंग है पेड भी रहते, कुछ ट्रेनिंग है फ्री भी रहते, डिपेंड ऑन की कस्टमर ला कैसा सुविधा चाहिए।
0: कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति उमा राठौर जी मन अपन बात ला कार्यक्रम ऊपर रखिन।
3: हमन आजकल अत्याधुनिक जीवन की ओर पश्चात सभ्यता की ओर सब बढ़त हन, लेकिन हमन पुराना जीवन पद्धति में ही हमन के शरीर और मानसिक आत्मिक सुख है। बहराड़ी जो गांव है जैविक खेती के लिए पुराना मैं अत्याधुनिक नवीनीकरण में का है, बीमारी बहुत ज्यादा हो,
0: आज हमने देखा था कैंसर बढ़त जाते,
3: कैंसर बढ़त जाते, और हमारे जो पुराना खेती पद्धति से जैविक खाद डालन खेत में ओकर से उत्पादन भी बढ़िया हो और हमारे शरीर भी बढ़िया रही, और अभी का है हमला रेडीमेड चाहिए हर चीज, तो रेडीमेड जैसे पैकेट में दूध आते वो का के बनाते, कैसे गाय गरुआ है ही नहीं है जमीन में, रोज के रोज पनीर बिका थे, रोज के रोज घी बिका थे, रोज के रोज आनी बानी के चीज बिका थे,
0: ज्यादा मात्रा में बिका थे,
3: ज्यादा मात्रा में खाद तो जरूर है हमन, लेकिन ओकर शरीर के नुकसान होते, जो कैंसर दुर्लभ बीमारी रिसे थे आज हर जगह देखे व मिला थे, तो हमला पुनः अपन पुराना पद्धति की ओर जाए व पढ़ी, अपन पुराना संस्कृति की ओर जाए पढ़ी, आज भी हमारे गांव में वो सब चीज है, बस हमला थोड़ा मेहनत करे के जरूरत है, जेकर से हमन के मानव जीवन सुंदर और स्वच्छ और स्वास्थ्य प्रदाय रहे। आज विशेष कार्यक्रम है मशरूम के, मशरूम मतलब छत्तीसगढ़िया में पुटू, अब पुटू खाए से हमन के शरीर ला बहुत लाभप्रद है, बहुत सारा प्रोटीन विटामिन है, कुछ ऐसे पुटू होते

0: जिला नहीं खान, जैसे पेड़ वेड़ में लगे रहते या जंगल झाड़ी में। बाकी बहुत सारा ऐसे फोटो है जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है। वह बहुत कैंसर से लड़े के क्षमता हम अगर महिला मन का है, हमन अपन घर परिवार के सेवा करत करत कहीं ना कहीं अपन सेवा ला भूल जाथन। तो मशरूम हर वो प्रोटीन ला पूरा करते। सब महिला मला मशरूम खाना चाहिए। यही सब ला देखे सुने और हमारे सब दीदी भैया मन आए हैं, वैज्ञानिक गण भी आए, जनप्रतिनिधि आए, गांव के मन भी आए।
1: सुखर आपके विचार रहे से आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप ला भी धन्यवाद भाई।
2: एकर बाद बलौदा जनपद सभापति चूड़ामणि राठौर जी कार्यक्रम के ऊपर अपन बात ला रखी।
3: भैया राम राम। विगत 15 साल से मैं देखत हूँ कि दीनदयाल यादव जी और राजकुमार साहू जी के अथक प्रयास से किसान मन ला आगे बढ़ाए व जो मन प्रयास करत है वो बहुत ही सराहनीय है। अभी कुछ दिन पहले भाजी महोत्सव हो रही, 2 वर्ष हो गए मतलब भाजी महोत्सव करत। छत्तीसगढ़ के हमन जो निवासी हैं उन भाजी बहुत पसंद करते हैं, तो ये लग कैसे आगे बढ़ाया जाए ये मन के सोच और सोच ला आगे बढ़ाया बा मन हर साल भाजी उत्सव करते हैं। वो तारतम्य में आज मशरूम जल हमन छत्तीसगढ़ हमन पुट्टू कथन मशरूम महोत्सव राज्य स्तरीय करे हैं और यह एमन के बहुत ही सराहनीय कदम सराहनीय एकर बा कि मन हर समय मन के सोच छत्तीसगढ़िया मन ला, छत्तीसगढ़ के जो किसान है ते मन ला, बेरोजगार है ते मन ला आगे बढ़ाए बा बहुत ही सराहनीय कदम एमन हरदम उठाते हैं। मैं जनपद पंचायत बलौदा के सभापति होए के नाते एमन ला अपन दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और कामना करत हूँ कि एमन निरंतर किसान मन ला, बेरोजगार मन ला आगे बढ़ाए बा ये काम ला करत रहे।
1: राठौर जी आपके अतकन शुभकामना रही से हमर किसान भाई मल्ला जरूर प्रेरित करी है। आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
3: राम राम। धन्यवाद।
2: मशरूम महोत्सव में ये जानेल मिलिस, ये सीखेल मिलिस कि मशरूम ला ताजा तो बेच सकथन, ओखर वैल्यू एडिशन करके जीनिस बना के सुखा के भी ओला बेचे जा सकत, ओखर पापड़ लाइबरी बिजौरी बरी सब भी बना सकत हैं जौन हमन ला लाभ दे।
1: हमर बीच हवा कोरबा बालको क्षेत्र के स्व सहायता समूह के दीदी मन आवा कर सो गोट बात करथन। दीदी मन ला राम राम है।
4: राम राम भी है।
1: कहा नाम है आपके?
4: परमेश्वरी सिंह।
1: कहाँ ले आया है?
4: कोरबा।
1: कोरबा
4: जी।
1: तो का कब होता है आज, यहाँ कैसे आया है?
4: आज हमन वही प्रदर्शनी लगाए बाय ही मशरूम का खेती करती, ओकर प्रोडक्ट पूरा लेके आए ही और ओकर और भी विजिट भी आए ही देखे बा कि भाई किसान स्कूल में और का हुआ थे और दीदी मन लगाई नहीं है तो वो मला हमन अनुभव भी ले बाई और अनुभव शेयर करे भी आए।
1: अच्छा, मतलब सीखे आए है और सिखाया है।
4: हाँ, दोनों।
1: तो आपके जिन महिला स्व सहायता समूह है कतेक महिला मन के समूह है?
4: 10 जने का।
1: अच्छा, और कतका दिन हो गए?
4: अभी 3-4 साल हो गए हैं।
1: तो आप मन के जिन स्व सहायता समूह है ओमा का अपन व्यवस्था करता, का बना था, का सिखा था?
4: हमन मशरूम प्रोडक्ट करती, खेती करती मतलब मशरूम का, और फिर मशरूम से जितना भी ऐसा जैसे मशरूम का वैरायटी बनाती अलग अलग, मशरूम रखिया बड़ी, मशरूम लाई बड़ी, मशरूम बिजौड़ी, मशरूम का अचार, मतलब मशरूम से जितना प्रोडक्ट हो ना वो सब ला बनाती और मशरूम का स्पॉन भी बनाती।
1: मतलब आप मशरूम उत्पादन करता और ओखर से प्रोडक्ट ला बना था है ना और बाजार में बेचता?
4: बेचता ना। जैसे मशरूम नहीं बिकीस तो भाई मशरूम ला बेचे बा तो लगाई ही, तो अगर नहीं बेची तो मैं का प्रोडक्ट बनाए सका था मशरूम, मतलब उसका वेस्ट मत हो करके ओकर प्रोडक्ट भी बनाती।
1: कुल मिला के वैल्यू एडिशन कर दिया।
4: हमारे
1: टमाटर के उत्पादन होते है लेकिन टमाटर ला हम सुखड़ी कर दिया सास बना दिन तो ज्यादा पैसा में बचा गए है न। तो मशरूम के जिन उत्पादन है वो करत अपन ला कै साल हो गए?
4: मोला 6-7 साल हो गए।
1: और कहाँ ले ट्रेनिंग ले रहा?
4: मशरूम में बालको से ही ले रहे और RCT।
1: अच्छा।
4: RCT का जो SBI RCT है ना वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे।
1: तो कतका उत्पादन हो जाते है?
4: मोर तो 15 से 20 किलो हो जाए डेली।
1: डेली हो जाते? कौन कौन सा प्रकार के मशरूम लगाते हैं?
4: मैं तो एक ही प्रकार का एक ही में फोकस करता हूँ, ऑयस्टर मशरूम में बस। अच्छा। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करती।
1: तो सुने हैं ना ऑयस्टर मशरूम के रेट है ज्यादा रहते?
4: नहीं, ऑयस्टर मशरूम का रेट है ज्यादा नहीं रहे, 200 से 150 रुपए किलो।
1: किलो? अच्छा।
4: जी।
1: और बटन मशरूम के रेट का रहते?
4: बटन मशरूम का 250 रुपए किलो।
1: अच्छा। कुल मिला के जिन आप मन के प्रोडक्ट है पूरा मशरूम आधारित है ना?
4: मशरूम आधारित।
1: चला दीदी आप मन से बात करें बहुत बढ़िया लगी। राम राम।
4: राम राम भी।
1: आपके का नाम है?
4: मोर मन मानकी कंवर है।
1: तो आपो मन यही समूह से जुड़े है ना?

0: नहीं मोर दूसर समूह मोर रिचर सर मंगला स्व सहायता समूह में 11 जन दीदी हमें।
1: अच्छा, तो आप अपने समूह ला कब ले शुरू करे रहा?
0: मोर समूह 2007 से चला
1: था। मतलब लंबा समय हो गया। तो आप मन का का बूता करता?
0: हम सबसे पहले तो समूह ही चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मशरूम के हमारे जानकारी मिली और मशरूम लगाना स्टार्ट करे हमन। हम पैडी मशरूम और ऑयस्टर मशरूम दोनों लगाते हैं।
1: पैरा मशरूम और ऑयस्टर दोनों लगाता। तो ये मशरूम ला आप मन दूसर जगह बेचता, उत्पादन जन ला करता, या फिर ओखर प्रोडक्ट बना के बाजार में बेचता?
0: मतलब फ्रेश मशरूम भी बेचता मार्केट में, और जो बच जाते ना तेला अचार बड़ी पापड़ बना लेता।
1: तो पैरा के बात करें, पैरा की व्यवस्था हो जाते?
0: हाँ, काबा की हमारे गांव एरिया है तो पूरा हम खेती किसानी करतन, ओकर से जो पैरा बचते तेकर हम पुटू लगाए काम करतन।
1: कक्का बड़े क्षेत्रफल में अपन पुटू की व्यवस्था करे?
0: जैसे जहाँ मैं बेड लगात हूँ ना, वहाँ पैरा पुटू लगात हूँ तो सब बेड आ जाते वहाँ।
1: अच्छा, हाँ। डेली कक्का उत्पादन हो जाते?
0: डेली के जैसे एक बेड में 500 ग्राम आते तो एक दिन में मोना 50 kg तक।
1: 50 kg हो जाते?
0: हाँ।
1: अरे गजब, और पूरा उड़ जाते?
0: हाँ, एक पैरा फुटू है ऐसा चीज है तो तुरंत उड़ जाते, वो बच्चे के नाम नहीं ले।
1: और लगाए के जैसे बीज लगाए हमन तो कई दिन में उत्पादन शुरू हो जाते?
0: वो 12 से 15 दिन में शुरू हो जाते।
1: हाँ, तो बढ़िया उत्पादन होते?
0: हाँ, बहुत अच्छा होते।
1: पैरा मशरूम उत्पादन करता तो का मुख्य परेशानी दिखेला मिलते या अब तक आपन ला दिखिस?
0: पैरा में तो खैर उतना कुछ परेशानी नहीं, कहे कि आसानी से बिक भी जाते, लेकिन कभी कभी थोड़ा मौसम की वजह से नहीं निकल पाए, कालापन आ जाते।
1: अच्छा,
0: परेशानी
1: तो कालापन आ जाते तो रेट कम हो जाते?
0: नहीं, रेट कम नहीं, मशरूम में नहीं आए, बेड में आते जब नहीं निकले,
1: बेड में आ जाते।
0: मशरूम में कोई परेशानी
1: नहीं आए। तो एमा लागत खर्चा कैसे आते?
0: जैसे पैरा फुटू का बोले तो एक बेड में 50 रुपए खर्चा आते, लेकिन ओला हम बेचता 300 से 400 रुपए तक बेचाते। कम लागत में ज्यादा फायदा वाला कब खेती है।
1: चला दीदी, आप मन सुकोट बात करें, बहुत बढ़िया लगी। राम राम।
0: राम राम।
2: तो किसान भाई, ये रही से दिनांक 26 जून 2026 के ग्राम बहेराडीह जिला जांजगीर चांपा में आयोजित राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव के रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम के संपादन रिकॉर्डिंग रही से अभिनव गौरहा जीतू भाई के, संयोजन प्रस्तुति रही से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। राम राम, जय जोहार।
3: धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं अपनी धरती हरित बनाएं, धरती पर हरियाली हो और जीवन में खुशहाली हो।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: तो शंगवारी हो, ये संदेश की पहली आपन सुनत रहो, राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव की स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम ग्राम बहराडी जिला जांजगीर चापा और जिन किसान मन के बीच में गोट बात लापन सुनाओ। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के रही सब है। संपादन रिकॉर्डिंग जीतू अभिनव गौरव कर रही से। संगवारी हो, एक सूचना आप मन बता देथन, आप मन सब जानबे करत हो कि प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार के शाम 7:30 में फोन इन आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एमा किसान भाई मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए पर आप मन हमार विशेषज्ञ मन ले फोन में अपन सवाल पूछ के समाधान पाथो। तो अही कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 के हमारे स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रही। संगवारी हो, बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक सवाल आपन पूछ सकत हो, रख सकत हो, जेखर विषय हवाय धान फसल मा जल प्रबंधन। एक पेट और आप अल्लाह बता दी, धान फसल मा जल प्रबंधन ये प्रथम भाग मा और दूसरा भाग मा 11 बजे से 11:30 तक की विषय हवाय दलहनी तिलहनी फसल मा जल प्रबंधन। एक पिताओ बता दिन दूसर भाग की रिकॉर्डिंग हो है दलहनी तिलहनी।

फसलमा जल प्रबन्धन त ए विषयमा सम्बन्धित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए बर आपन हमर फोन नंबर बताथनो मा फोन कर ले हा 26 65 92 पहला फोन नंबर है 26 65 92। दूसर फोन नंबर है 31 00 26 और एसटीडी कोड नंबर हावय 07752। तो जरूर आप मन के फोन की इंतजार करत रहो, आप मन फोन लगाओ और ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग भी हनिया रिकॉर्डिंग के प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 के शाम 7:30 से 8 के बीच आप सुन सकत हो। सूचना सिरागे संगवारी हो, अब यही सूचना के संग कार्यक्रम ले विदा ले के बेरा हो गए। आपन से आगू कार्यक्रम में फिर भेंट मुलाकात करबो, नवा विषय जानकारी गीत संगीत लेके आबो। अब कार्यक्रम ले विदा देवा, बतके के बो जय जवान जय किसान, वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।

किसानवाड़ी आप सुन रहे थे एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। समय है बहनों के कार्यक्रम महिला सभा का।

सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्रोग्राम महिला सभा में, और मैं हूं आपकी दोस्त लिंटा। अभी कुछ देर पहले अपने एक दोस्त के स्टेटस में मैंने कुछ सुंदर लाइन्स पढ़ी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। वो लाइन थी, जब तक आप खुद पर काम नहीं करते तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव संभव नहीं है। जी हाँ सखियों, ये चंद लाइन्स हम सभी के जीवन से भी जुड़ी है। हम पूरे मन से अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन यदि हम अपने ज्ञान और समझ को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें तो ना केवल हम अपने परिवार को लेकिन समाज को भी बेहतर दिशा दे सकते हैं। अब सखियों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ दें। इसका मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, अपने अधिकारों को जानना, अपनी बातों को आत्मविश्वास से कहना और अपने निर्णयों पर भरोसा रखना। यही छोटी छोटी बातें सखियों हमें आगे बढ़ाती है और एक जागरूक नागरिक बनाती है। और जब हम महिलाएं जागरूक बनती हैं तभी लोकतंत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। और यही बात हमारी आज की चर्चा से भी जुड़ी हुई है। हर साल 30 जून यानी आज के दिन पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल नेताओं या संसद तक सीमित नहीं है, लेकिन हम सभी नागरिक और विशेषकर हम महिलाएं भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस तरह से सखियों, लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब हम जागरूक हों, अपने अधिकारों को हम समझें और समाज तथा देश के फैसलों में अपनी भागीदारी निभाएं। सखियों, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यानी देश के फैसले जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर करते हैं। संसद और विधानसभा वे स्थान हैं जहां हमारे प्रतिनिधि हमारी समस्याओं और जरूरतों को उठाते हैं या चर्चा करते हैं। इस प्रकार से सखियों, हम महिलाएं भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और लोकतंत्र में भागीदारी से मतलब केवल चुनाव लड़ना नहीं है, हम महिलाएं कई तरीकों से लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम जो कि आप जानती भी हैं, वो है मतदान करना। सखियों, जब भी चुनाव हो अपने मतों का सही और सोच समझ कर उपयोग करें आप, क्योंकि हमारा एक वोट देश और समाज की दिशा तय करने में योगदान देता है। दूसरी बात है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानना, क्योंकि जब हमें अपने अधिकारों की जानकारी होगी तभी हम अपनी

0: बात सही जगह पर रख पाएंगे। और तीसरी बात है, गांव हो या मोहल्ला, आपके आसपास जो भी बैठके वगैरह होती हैं उनमें भाग लें सखियों। चाहे ग्राम सभा हो या वार्ड की कोई बैठक, वहां जाकर अपनी बात रखना भी लोकतंत्र में भागीदारी है। यदि आप पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य या सुरक्षा जैसी कोई भी समस्या अपने आसपास देखती हैं, तो इन्हें खुलकर बोलना, बैठक में इन बातों को सामने रखना हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। आप देख ही रही होंगी सखियों कि आज महिलाएं केवल अपने घरों तक सीमित नहीं है, वे सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद, अधिकारी, शिक्षक और समाज सेवी बनकर समाज की सेवा में अपना योगदान दे रही हैं। और ये बदलाव हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना रहा है। वैसे सखियों, लोकतंत्र की शुरुआत हम सभी के घरों से भी होती है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को ईमानदारी, समानता, दूसरों का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों का महत्व सिखाते हैं, तब हम देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करते हैं और यही अच्छे नागरिक आगे चलकर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव बनते हैं। और हमें ये भी याद रखना चाहिए सखियों कि महिलाओं की आवाज भी सुनी जाएगी, तभी हमारे समाज के हर वर्ग की जरूरतें सही ढंग से सामने आएंगी। इसलिए अपनी बात कहने में आप कभी संकोच नहीं करें, आपकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की। इस तरह से सखियों, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें ये संदेश देता है कि लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बराबरी और सम्मान के साथ सुनिश्चित होगी। आइए हमारे लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बनाने में हम अपना योगदान दें। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में विराम लेते हुए सुनते हैं संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए सखियों, रुक करते हैं हमारे आज के क्रम उड़ान की ओर, जिसमें हमारी आज की मेहमान है बांसुरी वादक गीतिका बांसुरीली।
4: धरती के बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपने धरती हरित बनाएं, धरती पर हरियाली हो और जीवन में खुशहाली हो।

0: सखियों, संगीत वह भाषा है जो बिना शब्दों के हमारे दिलों तक पहुंच जाती है, और जब सुरों की यह धारा बांसुरी से निकलती है तो मन जैसे खुशियों से भर जाता है, प्रकृति के और करीब पहुंच जाता है। बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय संगीत की आत्मा है, जिसकी मधुर तान कभी मन को शांति देती है तो कभी नई ऊर्जा से भर देती है। वैसे अगर ध्यान से सोचा जाए तो बांसुरी एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा जिसमें 6 से 7 छेद या होल होते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि उसमें से ऐसा संगीत निकलता है जो दिलों को छू जाता है। इन्हीं बातों को हमें समझाने और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी कलाकार स्टूडियो में आमंत्रित हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और सुरों की साधना से एक अलग पहचान बनाई है, और आप हैं बांसुरी वादक गीतिका बांसुरीली, जिनसे हम उनके संगीत के सफर और भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत करेंगे। गीतिका, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी के हमारे स्टूडियो में।
1: शुक्रिया मैम।
0: सबसे पहले गीतिका, आप अपने बारे में हमें और हमारे सखियों को बताएं।
1: जी, मेरा नाम गीतिका है और मैं यहीं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पली बढ़ी हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है DAV पब्लिक स्कूल वसंत विहार से।

0: और अभी वर्तमान में मैं बीएससी ऑनर्स बॉटनी में कर रही हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, और मैं वहाँ फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। गायन और हारमोनियम वादन में मेरी रुचि रही है बचपन से, और उसके अलावा मैं अभी वर्तमान में बांसुरी वादन कर रही हूँ। अलग अलग कार्यक्रमों में मैंने प्रस्तुति दी है।
1: वाह, क्या बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी गायन में तो रुचि रही है, लेकिन संगीत विशेष रूप से बांसुरी की ओर आपका झुकाव कब और कैसे हुआ?
0: जी, इसकी भी एक कहानी है कि मेरा झुकाव बांसुरी की तरफ कैसे गया। जैसे मैंने बताया कि बचपन से संगीत और गायन में रुचि रही है, लेकिन ये 2020 की बात है।
1: अच्छा,
0: उससे पहले क्या हुआ था कि मेरी नानी ने एक बांसुरी खरीदी थी। वो वृंदावन गई थी तो उन्होंने वहां से एक बांसुरी खरीदी थी और
1: अच्छा।
0: मेरी मम्मी को दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। तो बहुत साल से वो हमारे घर पे रखी हुई थी। उसके बाद जब 2020 में लॉकडाउन हुआ तो मुझे समय मिला, तो मैंने सोचा कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट मैं बजाती हूँ तो उसके अलावा मैं बांसुरी बजाऊँ।
1: जी
0: तो मैंने मम्मी से मांगा कि मुझे वो बांसुरी दे दो। तो मम्मी ने क्या कहा कि अभी तुम्हारे भाई की परीक्षाएं चल रही हैं तो अभी तुमको दूंगी तो तुम टें टें टें टें बजाओगी, सबको परेशान करोगी और हल्ला करोगी, तो अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ। फिर एक साल के बाद मेरे भाई ने बोला कि चल मैं तुझे देता हूँ बांसुरी निकाल के, और उन्होंने फिर निकाल के मुझे बांसुरी दी। उसके बाद मैंने शुरू किया धीरे धीरे। एक हफ्ता मैंने सरगम की प्रैक्टिस की, सारे गम वगैरह, उसके बाद मैं गाने बजाने लग गई। फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने बांसुरी को बजाना शुरू किया तब आपको किन किन का सहयोग मिला, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: परिवार का सहयोग मिला, म्यूजिक की फैमिली तो नहीं है मेरी, मम्मी का तो बहुत सहयोग रहा है हमेशा से। नानी ने जो बांसुरी दी थी, मैंने बताया, उसको मम्मी ने संजो के रखा था बहुत सालों तक, और अभी भी मैं कुछ भी बजाती हूँ तो हमेशा मम्मी से ही पूछती हूँ कि मम्मी क्या वो सही है, और मम्मी ही एक तरह से मेरी क्रिटिक भी हैं कि
1: वाह,
0: मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, ये भी मम्मी हमेशा मेरे को बताती ताकि आगे कभी वो गलतियाँ ना हों। तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मम्मी का। और जैसे बात आपने चुनौतियों के बारे में पूछी मैम, तो उसमें एक चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ा है, वो है कि ट्रैवलिंग करने के लिए।
1: जी
0: जैसे शोज़ के मुझे ऑफ़र आए, कहीं से नागपुर से आया, उड़ीसा से आया, तो आने जाने में बहुत समस्या होती है, और कहीं भी जाने से पहले सोचना पड़ता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ पे रखेंगे,
1: सही है।
0: और टाइमिंग की भी प्रॉब्लम कि बहुत देर रात ना हो। और ऑर्केस्ट्रा वगैरह से भी मुझे हमेशा से ऑफ़र आते हैं
1: अच्छा।
0: और उन वहाँ मैं जा नहीं पाती क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं तो उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पाते, तो वो एक चीज़ मुझे बहुत खलती है। और ऐसा लगता है कि मतलब मैं वहाँ करती तो शायद मैं और आगे पहुँच जाती अभी।
1: आगे आप पहुंचेंगी, हमारी शुभकामनाएं हैं। जिस तरीके से आप बांसुरी बजा रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है गीतिका।
0: जी मैम,
1: गीतिका, ये बताइए कि बांसुरी बजाते समय रोज का जो रियाज है वो कितना जरूरी है?
0: रियाज के लिए तो संगीत में कहा जाता है कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो बांसुरी जो है वो सांस का खेल है, तो हमें अपनी सांस की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए डेली रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आज मैं जो चीज़ बजा पा रही हूँ, अगर मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं करूँ, बार बार मैं नहीं बजाऊँ, तो धीरे धीरे वो चीज़ मैं नहीं बजा पाऊँगी। तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए मेंटेन करने के लिए कि हमारी बांसुरी पे पकड़ बनी रहे, उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा, और रियाज के लिए किस प्रकार का रूटीन रहता है आपका?
0: रियाज के लिए मैं पहले तो दिन की शुरुआत योग से करती हूँ, जिससे सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ, फिजिकली हम फिट।

0: राज करेगा।
1: बिल्कुल
0: तो बांसुरी जो है वो सांस का खेल है, तो हमें अपनी सांस की जो क्षमता है वो बढ़ाने के लिए डेली रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आज मैं जो चीज़ बजा पा रही हूँ, अगर मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं करूँ, बार बार मैं नहीं बजाऊँ, तो धीरे धीरे वो चीज़ मैं नहीं बजा पाऊँगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए मेंटेन करने के लिए कि हमारी बांसुरी पे पकड़ बनी रहे, उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा, और रियाज के लिए किस प्रकार का रूटीन रहता है आपका?
0: रियाज के लिए मैं पहले तो दिन की शुरुआत योग से करती हूँ, जिससे सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ। फिजिकली हम फिट रहते हैं, हमारी सांस भी उससे बढ़ती है। ध्यान थोड़ा देर कर लिया ताकि फोकस बना रहे बजाते समय। उसके बाद जो बांसुरी के लिए हम रियाज करते हैं वो मैं करती हूँ ताल के साथ, सुर को जानने के लिए तानपुरा की मैं मदद लेती हूँ, जिससे सुरों में पकड़ बनी रहे।
1: मतलब एक तरीके से रोज का रियाज जरूरी है।
0: जी, रोज का रियाज बहुत ज़रूरी है।
1: और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बांसुरी के भी प्रकार होते हैं क्या गीतिका?
0: जी, बांसुरी के प्रकार होते हैं, वो अलग अलग स्केल से निर्धारित होते हैं। जैसे संगीत में 12 स्वर होते हैं,
1: जी
0: तो इंग्लिश में एक एक के लिए एक एक नोट है, जैसे सी डी ई ऐसे होते हैं, तो हर एक स्केल की एक बांसुरी होती है। उसके अलावा हम बेस फ्लूट देखते हैं, मिडिल फ्लूट देखते हैं और स्मॉल फ्लूट्स देखते हैं। तो
1: अच्छा
0: जो बेस फ्लूट होती है उनकी जनरली लंबाई अधिक होती है और वो संगीत के लोअर ऑक्टेव यानी मंद्र सप्तक में अधिकतर बजते हैं।
1: अच्छा
0: और जो मिडिल स्केल की फ्लूट होती है वो मध्य सप्तक में बजती है, जो मिडिल ऑक्टेव है। जैसे कि बेस बांसुरी में हम भजन बजा सकते हैं, गजल
1: अच्छा
0: बजा सकते हैं, वैसे गाने बेस में बजाते हैं। और मिडिल फ्लूट में जो बाकी के जो भी नॉर्मल गाने हैं वो सब हम बजाते हैं। और स्मॉल फ्लूट की बात करूँ तो उनमें जो उंगलियों के लिए जो होल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उसकी
1: अच्छा
0: आवाज़ पतली होती है, बहुत हाई पिच में होती है। तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली फोक के लिए, फोक जो संगीत होता है या जो फास्ट गाने हैं तेजी से बजते हैं, उसके लिए हम स्मॉल फ्लूट्स का यूज करते हैं।
1: अच्छा, तो आपने जैसे कि होल की बात की, इसके बीच में जो आप डिस्टेंस बोल रहे हैं वो क्या कुछ सेंटीमीटर वगैरह का होता है?
0: वो डिस्टेंस जो है वो स्केल के साथ, मतलब जैसे स्मॉल फ्लूट है तो जितना स्केल ऊपर बढ़ते जाएगा वो डिस्टेंस कम होता जाता है होल्स के बीच, और
1: अच्छा
0: जितना हम बेस फ्लूट के साइड आएंगे उतना ज़्यादा होल्स के बीच में डिस्टेंस और बढ़ता जाता है।
1: अच्छा,
0: स्मॉल फ्लूट
1: तो
0: में होल्स पास होते हैं और बेस में दूर दूर होते हैं।
1: ओके, अलग अलग प्रकार की बांसुरियों की बात जैसे कि गीतिका ने हमें कहा, और सखियों हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ बांसुरी मैं देख रही हूँ गीतिका अपने साथ भी लेके आई हैं जो कि अलग अलग प्रकार की हैं। तो आप अभी शायद इन्हीं की बात कर रही थी
0: जी,
1: मुझसे,
0: इन्हीं की बात कर रही थी।
1: तो आप हमें कुछ धुन बजा के सुना सकती हैं?
0: तो अभी मैं सबसे पहले आपको बेस बांसुरी में सुनाती हूँ। मेरे हाथ में अभी है एफ बेस की एक बांसुरी, तो उसमें मैं आपको भजन बजा के सुनाती हूँ। शिव कैलाशों के वासी जो भजन है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
1: जी, जरूर।

0: वाह, बहुत खूब।
1: मैम, जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल फ्लूट है, उसमें जनरली फास्ट गाने बजते हैं या लोक धुन जैसे बजती है, तो एक फास्ट गाना मैं आपको सुनाती हूँ, लेके पहला पहला प्यार।
0: वाह, बिल्कुल, हम आपसे जरूर सुनेंगे।

0: क्या खूब। अब आप हमें क्या सुना रही हैं?
1: अब मैं एक सी शार्प मिडिल की फ्लूट में आपको सुनाती हूँ, आओगे जब तुम ओ मोरे साजना गीत जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ।
0: ये गीत तो मुझे लगता है कि हमारी सखियों का भी फेवरेट सॉन्ग है।
1: जी।

0: क्या बात है, वाह। गीतिका, यदि हम पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें, ज्यादातर मेटल या धातु से बने जो बांसुरी हैं उनका प्रयोग होता है, और हमारे शास्त्रीय संगीत में बांस से बने बांसुरी का, तो दोनों में क्या अंतर आप समझती हैं?
1: मेटल की जो बांसुरी होती है पाश्चात्य संगीत की, उसमें अलग अलग कीज होती हैं। हर एक सुर को बजाने के लिए एक की वहां पे मौजूद है। और हम इंडियन फ्लूट की जो बात करें, इंडियन बैम्बू फ्लूट, उसमें जो होल्स होते हैं उनको हमें कुछ सुरों को लेने के लिए, जो कोमल स्वर होते हैं मेनली, उनको लेने के लिए हमको होल को आधा बंद करना पड़ता है, हाफ क्लोज से बजता है वो। और मेटल में वो एक एक कीज होती है उन्हीं सुरों के लिए।
0: अच्छा।
1: जैसे मेटल फ्लूट में एक एक जब सुर हम ट्रांजिशन करते एक सुर से दूसरों पे गए, तो वो जनरली हमको पता चल जाता है क्योंकि कीज चेंज हुई। और वहीं बैम्बू फ्लूट जो है उसमें एक बहाव सा हो जाता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आधे से हम गए, पूरा हमने क्लोज किया होल, फिर हाफ किया, फिर अगले में गए, तो वो एक कंटिन्यूअस बचता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं एक सुर से दूसरे सुर में चली गई। एक कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन रहता है हमेशा इंडियन फ्लूट में।
0: अच्छा। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप कार्यक्रमों के दौरान स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, तब आपकी तैयारी किस प्रकार से रहती है?
1: सबसे पहले तैयारी तो मैं गाने के लिए करती हूँ। जैसे किस प्रकार का मंच है वो मैं ध्यान देती हूँ कि कहीं पर भजन बजाना है मुझे, अगर कोई क्लासिकल स्टेज है तो वहाँ क्लासिकल या सीमी क्लासिकल या कोई राग मैं बजाऊं उसकी मैं तैयारी करती हूँ। या फिर मैं कॉलेज में बजा रही हूँ तो फास्ट रॉक या बॉलीवुड वैसा कुछ मैं बजाऊं उसकी मैं तैयारी करती हूँ, लिस्ट बनाती हूँ गानों की, उसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ लगातार। उसके अलावा क्योंकि हमको परफॉर्म भी करना है तो ड्रेस पे थोड़ा ध्यान, और वो भी उसका भी सेम है कि अलग अलग इवेंट पे अलग अलग, जैसे कुर्ती पहन ली, कोई भजन संगीत है या फिर क्लासिकल इवेंट है तो
0: बिल्कुल,
1: और कॉलेज में है तो जीन्स पहन लिए, ऐसा वो तैयारी रहता। और एक तैयारी है मेनली कि हम वीडियोस ले, फोटोज ले, उसके लिए हम पहले से वो तैयार कर लेते हैं। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देखेंगे, गीतिका बांसुरीली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि कोई प्रोग्राम्स के मैंने छोटे छोटे व्लॉग्स डाले हुए हैं। आजकल व्लॉग्स बहुत चलते हैं, मिनी व्लॉग जैसा, तो उसकी शूटिंग, उसके हम एंगल्स कैमरा के, क्या क्या हमको फोटो लेनी किस सिक्वेंस में, उसकी एडिटिंग, उस पर हम ध्यान देते हैं।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। अभी तक किन कार्यक्रमों और मंचों पर आपने बांसुरी वादन की प्रस्तुति दी है गीतिका?
1: सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने रायगढ़ के चक्रधर समारोह में 2023 में प्रस्तुति दी थी।
0: बहुत खूब।
1: उसके अलावा भोरम देव महोत्सव में मैं गई थी 2023 और 2025 में, और अभी अभी 2026 में शिवरात्रि के दिन मैं राजिम गई थी, वहाँ कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वहाँ भी मैंने प्रस्तुति दी है। इसके अलावा मैं जीजीवी में तरंग बैंड का भी एक हिस्सा हूँ, तो हमने जो वहाँ कॉन्वोकेशन होता है दीक्षांत समारोह, वहाँ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आए थे, उनके सामने भी हम लोगों ने परफॉर्म किया।

0: था।
1: वाह,
0: इसके अलावा और कई छोटे बड़े मंचों पे तो प्रस्तुति दे चुकी हूँ।
1: क्या बात है। जब आप इस प्रकार की प्रस्तुतियां देती हैं तब मन से कैसा महसूस करती हैं?
0: मन से तो ऐसा लगता कोई कोई सपना है, जो बचपन में जो सपना देखा था वो
1: जी
0: पूरा हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: यकीन नहीं होता कभी कभी, और उसके वजह से आप बजा लिए, फिर जो ऑडियंस से जो प्यार मिलता है, मतलब आपको उस नाम से जाना जाता है कि देखो वो बांसुरी वाली लड़की, वो
1: बिल्कुल।
0: आपकी पहचान बन जाती, तो वो बहुत अच्छा लगता है। सबसे हम एक जुड़ाव सा महसूस हो जाता है, संगीत की वजह से सब एक साथ हम जुड़ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर जो तालियां बजती है, एप्रिसिएशन मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और आगे बढ़ने के लिए वो और प्रेरित करता है
1: करता है
0: मुझे।
1: जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर जो बेटियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने कला के क्षेत्र में अपना भविष्य किस प्रकार से बना सकती हैं?
0: कला के क्षेत्र में तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो मेहनत और दूसरा धैर्य।
1: बिल्कुल
0: अपने कला से प्रेम करिए, उसकी इज्जत करिए और
1: जी।
0: लगे रहिए उसको, जितना आप निखार सकते हैं उतना निखारिए।
1: जी
0: और दूसरी चीज़ है धैर्य। अब क्या होता है कि आप सीख चुके हैं बट आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, ये चीज़ बहुत बार होती है कलाकारों के साथ।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब आपका समय आता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपको हर चीज़ मिलने लगती, तो आप उस समय का इंतज़ार करिए, हिम्मत मत हारिए कि हमारा समय नहीं आ रहा, आपका समय एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, और
1: बिल्कुल
0: जुटे रहिए अपने कला को निखारने के लिए।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोली आपने गीतिका, और आपकी सुंदर संगीत सफर को सुनने के बाद हम और हमारी सखियां ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: आगे मैं चाहती हूँ कि खुद के शोज करूँ और भी ज़्यादा, लोगों से जुड़ूँ जो और आर्टिस्ट होते हैं जो गाते हैं बजाते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट है उनसे मैं जुड़ूँ, उनसे मैं मिलूँ, सीखूँ, और जो मैं सीख रही हूँ बांसुरी उसको और ज़्यादा अच्छा करूँ और ज़्यादा उस पर काम करूँ। और ये भी मैं चाहती हूँ कि अपना एक स्टूडियो बनाऊँ, स्टूडियो पर रिकॉर्ड करूँ।
1: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी अपनी एक स्टूडियो हो और उसमें बहुत सारे हमारी जो आज के युवा पीढ़ी हैं वो आपसे सीखने के लिए आपके पास आएं। आप हमारी स्टूडियो में आएं, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारी जो सखियां सुन रही हैं आपसे कुछ आज उन्होंने सीखा होगा। गीतिका, आप हमारे स्टूडियो में आएं और आपने हमें और हमारी सखियों का मनोरंजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आकाशवाणी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया।
1: चलते चलते हमारी सखियों के लिए बांसुरी से एक और धुन सुनाकर हम चाहेंगे गीतिका जी कि आप कार्यक्रम का समापन करें।
0: मैं सुनाना चाहूंगी तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, और उसी के साथ देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
1: सुनाइए।

0: गीतिका जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया मैम।
2: धरती के बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाए, धरती पर हरियाली हो और जीवन में खुशहाली हो।
0: तो सखियों, आप थी बांसुरी वादक गीतिका बांसुरीली। उम्मीद है इनकी बातचीत और मधुर संगीत ने आप सभी का मन मोह लिया होगा। आपको बता दें, संयोजन और प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की थी। और आइए अब जुड़ते हैं श्रीमती अंजू किरण से, जो कि हमें अंतरिक्ष की जानकारी, नई खोजों के लिए हम सभी को प्रेरित करती है, इस विषय पर अपने विचार साझा करेंगी।
3: हेलो सखियों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं श्रीमती अंजू किरण। आज मैं आपके लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आई हूं। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, जिसे हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। सखियों, क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को देखकर सोचा है कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा और क्या क्या मौजूद है? इन्हीं खगोलीय पिंडों में से एक है क्षुद्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में ऑस्टेराइड्स कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे में पाए जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि 30 जून को ही विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तुंगुस्का घटना हुई थी। उसी दिन एक विशाल खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में विस्फोटित हुआ, जिससे हजारों पेड़ नष्ट हो गए। इसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह घटना माना जाता है। इसी घटना की स्मृति में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करना है और यह समझाना है कि अंतरिक्ष में मौजूद ये पिंड कभी कभी पृथ्वी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार ऐसे क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं। सखियों, अंतरिक्ष की जानकारी हमें जिज्ञासु बनाती है और नई खोज के लिए प्रेरित करती है और यह समझाने में मदद करती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। तो आइए इस विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस पर हम अपने बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाएं, उन्हें आकाश और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करें और नई खोजों के प्रति उत्सुक बनाएं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।
0: सखी, उम्मीद है आज के कार्यक्रम रूपी सफर का आनंद आपने जरूर उठाया होगा। पत्रों के जरिए आप हमें बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें महिला सभा BSP@gmail.com पर भी मेल के जरिए अपना संदेश भेज सकती हैं। इन्हीं बातों के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो साथी लिंटा को। नमस्कार।

महिला सभा आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:20 पर ईमेल करेंगी सुने हम पेश करेंगे श्रोताओं। 6:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच द ओवल लंदन में पहले सेमीफाइनल खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। कल के कार्यक्रमों में सुबह 6:05 पर हम पेश करेंगे आराधना। 6:35 पर रामचरित मानस का गायन सुनिएगा। 6:45 पर नवविहान में सुनिएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी। सुबह 7:05 पर आज सुबह और 7:30 पर यादों के झरोखे से पेश करेंगे। सुबह 8:30 पर अमराई में सुनिएगा डीमन सेन जवाहरलाल।

0: भाई भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: कल शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट आप सुनेंगे। शाम 5:05 पर कल सुनेगा चित्रपट संगीत। युवा जगत में शाम 5:35 पर सुनेगा आज की बात वन महोत्सव और डॉक्टर बीसी राय का योगदान विषय पर क्रम प्रकृति और पर्यावरण सुनेगा। प्रस्तुति निमेचंद साहू की होगी। 6:20 पर और शाम 7 बजे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम हम पेश करेंगे। 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय होगा वर्षा जल संचयन। भेंटवार्ता में सुनेगा सफल कृषक से भेंट क्रम में श्री श्यामलाल साहू ग्राम बिरगहनी विकासखंड बड़ौदा जिला जांजगीर चांपा से राजू भैया की बातचीत। रात 8:15 पर रजनीगंधा हम पेश करेंगे और रात्रि 8 बजे आप सुगम संगीत सुन सकेंगे, जिसमें आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल के गाए चंद गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। वीबी जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे हे। औ सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में काली 1 जुलाई ले लागू हो जही। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जगह लिही। एकर तहत हर एक ग्रामीण परिवार मल्ला हर वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार देवाए के गारंटी दे जाही। ये योजना के तहत कोनो भी मनखेला बेरा मा काम नहीं मिली त ओला बेरोजगारी भत्ता दे के प्रावधान घलो है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र मन मा सड़क तरिया जल संरक्षण सिंचाई वृक्षारोपण सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण और आने आने विकास काम मन ला प्राथमिकता दे जाही। छत्तीसगढ़ में ये योजना के प्रचार प्रसार पर ग्राम सभा चौपाल पोस्टर बैनर मुनादी रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करेगी। उन्हें सरपंच सचिव रोजगार सहायक स्व सहायता समूह के माइलोगिन जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन रहा ले लोगन मल्ला योजना के जानकारी देगी। एकर अलावा ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर में प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार हा पेट्रोल और डीजल के बेचे और खरीदी में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ला 1 जुलाई ले हटाए के फैसला करे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है कहे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी के खुदरा पेट्रोल पंप में अब सामान्य व्यवस्था

0: के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय डाहले कह गए है कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पाद के आपूर्ति सामान्य हो गए है और पेट्रोल डीजल पूरा मात्रा में हवे। एखर सेती जनहित में ये अस्थायी रोक ला वापिस लेके फैसला ले गए है। नई दिल्ली में राखे गए 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक ला राष्ट्रीय स्तर में सराहना मिले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकसित ये मॉडल की सराहना करत ग्रामीण आवास निर्माण लग गति देने वाला बताये। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा हा करे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत के सपना पूरा नहीं हो सका है। हरियाणा के हिसार में खेत बचाव अभियान के समापन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान ने कही कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करे में काम करत है जौन हाँ माटी और ओमा जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी दी है। ओमन किसान माला जैविक खेती अपनाए के सलाह दी। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। अब किसान मला पाछू खरीफ बछर जैसन उखर पात्रता के मुताबिक एक मुश्त यूरिया देवाया जाही। प्रदेश में यूरिया के पर्याप्त मात्रा देखत पहली लागू कुछ एक रोक मल्ला खत्म कर दे गए है। जांजगीर चांपा जिला के कृषि विभाग के उप संचालक राकेश शर्मा बताये कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने के स्थिति किसान मला एक मुश्त यूरिया दे जाही। उन्हें कोनो समिति में स्टॉक के कमी हुए मा बाचे मात्रा ला यूरिया पहुंचते किसान मल्ला बांटे जाहे। उन्हें वैश्विक परिस्थिति के स्थिति रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता में पड़त प्रभाव ला देखत कृषि विभाग डाले राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग ला बढ़ावा दे जावत है। राज्य सरकार है किसान मल्ला नैनो उर्वरक के प्रति जागरूक करे बर अभियान चलावत है। कृषि विभाग किसान मन ले अपील करे है कि अपन तीर ले सहकारी समिति और कृषि विभाग के अधिकारी मन ले संपर्क करके नैनो डीएसपी और नैनो यूरिया के वैज्ञानिक उपयोग के जानकारी लेवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। सरगुजा जिला के रामगढ़ में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिरागे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुदेश साय शामिल हुई। ये मौका में श्री साय कहने कि रामगढ़ सरगुजा के हजारों बच्छर जुना सांस्कृतिक चेतना कला आस्था गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रतीक हरय। ओमन कहने कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति इतिहास साहित्य और पर्यटन के संगम हरे। ओमन कहने कि छत्तीसगढ़ के धरती प्राकृतिक संपदा के संगे संग सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप में घलो विश्व स्तर में बड़का चिन्हारी राखथे। ये मौका में मुख्यमंत्री रामगढ़ के विकास पर 1 करोड़ रूपया और उदयपुर डूमर डीहला मिला के नगर पंचायत बनाए के घोषणा करी। ये दौरान मुख्यमंत्री विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीता बेंगरा गुफा जोगीमारा गुफा और क्षेत्र के अनूठा प्राकृतिक धरोहर हाथी पोल के अवलोकन करी। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत आने आने जनप्रतिनिधि मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी है महिला मोर्चा में संभाग प्रभारी और सह प्रभारी मन की नियुक्त करे है। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सहमति ले प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे जारी करीन है। हेमलता चंद्राकर रायपुर संभाग के प्रभारी और सुषमा खलकोला सह प्रभारी नियुक्त करेगे है। ऐसने है शीतल नायकला दुर्ग संभाग के प्रभारी और वर्षा सिंहला सह प्रभारी बनाए गए है। रंजीता रंधावाला बस्तर संभाग के प्रभारी और जानकी कोरसाला सह प्रभारी फुलेश्वरी पैगराला बिलासपुर संभाग के प्रभारी और किरण साहूला सह प्रभारी के संग किरण मरकामला सरगुजा संभाग के प्रभारी और रंजनी तिवारीला सह प्रभारी बनाए गए है। रथ यात्रा के मौका

0: यात्री मन के सुविधा बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ह गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला ले हे। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई के गोंदिया ले पुरी पर चलही। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई के पुरी ले गोंदिया पर रवाना होगी। ट्रेन के स्टॉपेज डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर समेत कई ठीन प्रमुख स्टेशन मन में रही। उन्हें हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन के अवई जवई 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ मां आरक्षक के पद में भर्ती पर कथित रूप से फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के मामला में आरक्षक की सेवा खत्म कर दी गई है। उन्हें उतई पुलिस आरक्षक के पद में चयनित आरोपी मोहित के खिलाफ अपराध दर्ज करके मामला ला कार्यवाही के बर मध्य प्रदेश पुलिस ला भेज दे है। मिले खबर के मुताबिक एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपी मन फर्जी जातीय और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे रहीन। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जातीय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाएगी, जेखर बाद आरक्षक के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करेगी। अब मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए है। एकर असर ले पूरा प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो गए है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ले गोट बात करत बताएं कि जुलाई महीना में मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यही बीच सरगुजा जिला में काली हवा गरेर और तेज वर्षा के दौरान गाज गिरे ले 5 साल के लड़का समेत 3 जिन लोगों की मौत हो गई। उन्हें 1 जिन नोनी गंभीर रूप से घायल हो गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। वीवी जी रामजी योजना छत्तीसगढ़ समेत देशभर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में रखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे, समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर दिनेश पांडे उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में जल प्रबंधन और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा दलहनी तिलहनी फसलों में जल प्रबंधन। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 2 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ईमेल पर ये मिल गई है फरमाइशें आप सभी की। उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश मोहाली, चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लक्षनपुर से रामजी, जीवनलाल रजक, निमिष, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमरा से वलीउल अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी, इफ्सल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी राय, नरवेल महाराज से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर, सौंगा मगलोर से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन,

अरगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले। कर्मा चौक लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू। रोहासी से मुकेश, नंदनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमेरी कुलासियागढ़ से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, कलिंद्री। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी। पटियावाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। कालेगांव से सुधाकर, राजे यादव, प्रशांत, संचित वायर, प्रथमेश, प्रणाली सरबद। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन। बजोनिया चालोन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श अलौकिक। राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब, लड्डू। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू, डब्बू। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आप सभी को आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में इंदिवर की शब्द रचना, कल्याण जी, आनंद जी के संगीत निर्देशन में, कुर्बानी फिल्म का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश आप सभी की वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार प्रमोद, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां, तलता फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया साहिन, नाज नाजिया, नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, तपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत, गुजरात से प्रवीण, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी, राजस्थान से धर्मेंद्र, छिंपा, कपिल, पूजा परिहार, रायगढ़ से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत, दीपक।

रिमझिम गुप्ता, समडील नवापार से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे जाधव, दीपक अंकु, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति, सरगुजा मैनपार से अजीता पार, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पिपलोर सरगांव से दीपेश, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद, समृद्धि पटेल, नेपानगर से प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराज से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। सुना रहे हैं आप सभी को किशोर की आवाज़ में सफर फिल्म का गीत, हिंदी वर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद किया हुआ।

0: किशोर कुमार के गाये इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब रिले करेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत
1: इकोनॉमिक बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट न्यूज ऑफ द डे। माय नेम इज राजेश लेख एंड विद मी इज माय को एंकर इन हिंदी प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ

0: joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. Namaskar.
1: Namaskar. Good evening, Sakshi. और यहाँ पर से पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में है आशा रावत. नमस्कार, फॉर्मर इंडिया बैटर.
2: नमस्कार.
1: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग राकेश.
3: वेरी गुड इवनिंग.
1: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं, रविंदर सिंह जी. नमस्ते. आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में. क्या लगता है, हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोन्यू जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
2: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो

0: संरक्षण ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़

रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: व रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 168,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी।

0: अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब रिले करेंगे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
2: 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जब विश्व कप जीता था तो पेरी ने विनिंग स्ट्रोक लगाया था चौका, और वही पेरी आज भी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद।
3: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
4: ये लगा आभा का चौका।
2: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर चार दिया, दूसरी गेंद पर चार दिया और ये तीसरी गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है। अब तक अगर आप देखें तो चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद। और जब आप इतनी विड देंगी तो ये चार लगेगा। बैकपट पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद चार रनों के लिए।
4: ये लगा आभा का चौका।
2: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम।
3: वेरी क्लेवरली पुट्स इट अक्रॉस एंड यूज़ द पेस ऑफ द बॉल देयर एंड एक्सटेंड्स द बैट टू हर लेफ्ट फार अवे फ्रॉम द बॉडी, इन कंट्रोल ऑफ द शॉट एंड जस्ट प्लेस इट वेरी लेट एंड द बॉल स्क्वीजेस थ्रू द गैप। दैट इज अ वेरी वेल प्लेस्ड शॉट।
2: क्लैक्सटन काफी खर्चीली साबित हो रही है। अब तक 3 चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। आए हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगे। उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। 1 और 4।
4: ये लगा आभा का चौका।
3: So section was gone, 63 for 2, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the two most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you've got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. both of them, Perry had two half centuries and Mooney had one half century.

0: this particular series. So they are in a perfect mode to strike, and why not?
1: बिल्कुल, खास तौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें, और मूनी ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं। तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिल-ए-तारीफ है।
0: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज टू बैटर्स मूनी एंड फेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइडी स्ट्रोक्स।
1: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं, चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप पांच के पांचों मैचेस लीग दौड़ के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता हो।
0: एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा साने सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63 for 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन्स ऑफ फोर्स एंड अ सिक्स, सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a six, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic cricket. They haven't played more often than not across the line. They have selected the right shot, maybe over the 30-yard fielders, or picked up the gap well, and played with a certain level of accuracy and commitment.
1: निसंदेह तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया की। अब देखना होगा कि फाइनल में कौन पहुंचता है, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड, और उन दोनों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। 2010 पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद सातवीं बार वर्ल्ड कप जीतेंगे अगर ये टूर्नामेंट को जीतते हैं, खिताब जीतते हैं। और तमाम जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हैं सब में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन का उनका सिलसिला जारी।
0: एंड इफ इंग्लैंड विंस, आई एम जस्ट सेइंग अज्यूमिंग, then it will be another women's ashes repetition. And if South Africa comes in and they play against Australia, Australia has already defeated South Africa once in this tournament, being from the same group. So one must say that it's going to be a contest either way. But England has really done well for itself this entire tournament. And if England and Australia clash, I'm sure going to be a marquee kind of a match in the final. It's going to be a great crowd catcher. So 6 matches, 8 wickets for Elia Eleni. And she's coming into bowl. Wonder what she would be doing. She's a seam bowler. Over the wicket, right arm. Balls. Short of a length. Width of a good fielding. Saves the blushes at the backward point region. Else that ball would have gone for a wonderful boundary of the backward point region. So much of width offered outside the off stump. The batter was almost prompted to go away from the line and play a hard shot, but well picked up there at backward point. So while this conflict goes on, so the halfway mark has been reached as the next delivery. Once again, the fielder there is Stefani Taylor at the backward point region and picks up no runs taken. We are 63 for 2, and Shama just reminds me that it's halfway through. Another 63 more runs, and that will take them to the finals once more. But the West Indies will have to do something really out of the skins if they have to bring in some kind of positivity, which now looks slightly diminishing with each run scored. As here is Eleni coming into bowl over the wicket to Perry. Perry of the backward strikes. The ball goes into the extra cover region. There's a fielder there who picks it up. Joseph, and no runs taken. The West Indies have a reason to worry. Obviously, if you just put about 125 on the scoreboard and see the difference in batting styles, they were struggling with the strokes, trying to play more often than not across the line, whereas Australians are very disciplined in the stroke play as well. Shot selection is very good. As here is Eleni bowling, another back of the length, and the batter goes on the back foot and thumps the ball into the mid-wicket region. Once again, the captain comes, Matthews picks it up, and allows not even the thought of a single on that occasion, and the score still remains. So, well, Australia looking confident. They have maintained their momentum. They're making sure that they move in a very structured way they don't have to commit harakiri, they don't have to

0: manufacture a stroke or play indiscreet cricket. They just have to pace their innings properly and they will cross over that 125. Here is Aline bowling in the next one. And this time she once again bowls a slow delivery and the batter very unable to strike. And what a wonderful over so far. The best of the overs from West Indies, Aline. Five dot deliveries. And if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over, and a T20 to have a maiden over, obviously not at this time, because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Alien comes into ball. Over the wicket to the right-handed Perry, who's on one of six balls of next the last delivery. And this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single. Obviously not a maiden over. And that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7। तुम
4: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64 for 2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः बेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था। तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66 for 2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली। कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67 2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेम को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है।

0: ऑस्ट्रेलिया की कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
1: 71 for 2 and 7.4 overs. Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches. But for the moment, the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs. Strike rate being 169.6. So another batter with a very, very devastating kind of a strike rate.
0: To Fletcher, up to kul milakar 7 रन दे चुकी हैं उनकी ये गेंद। इस बार फिर फ्लाइट कराने की कोशिश, हल्का सा सफल किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला इकलौता रन। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है। 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। बैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73-2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी, और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेम को लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
1: 73 for 2 and they're cruising except for that one over which almost went as a maid and Perry was playing those 5 deliveries as dot ball and thereafter immediately after that over she went back, she was uncomfortable. Some minor niggle around as here is Ellen coming into bowl over the wicket, straight run up and balls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get 4 more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians, who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket, and that's width offered and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region. The ball rushing to the fence, cruising past the field of 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका,
0: बिल्कुल परफेक्ट गेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे 4 रनों के लिए।
1: व्हाट अ वेल place shot, that was almost perpendicular to the pitch and Ellen couldn't believe it. Obviously if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery, as here is she running in away from us over the wicket, almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at wide-ish long off region, picked up there, but in the process they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end. So the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46 and those 4 runs will take her to the score of a half

0: century, a highest score this season, had been 74 not out. As here is the next delivery, which is right outside the off stump, plays it down into backward of point. The ball picked up there, and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Mulisar. Of course, she couldn't do much with the ball. As here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries. As Ellen comes in and bowls the last delivery, wide outside the leg stand. The wicketkeeper misses. That's wide, and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up. So that's 2 runs, but then a wide. That was a completely offline, rank bad delivery. The keeper misses, and lucky that the fielder was out there, and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia because they are not in a great hurry. Of course, they want to complete the process as soon as possible, not linger on, and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs. Need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery, strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder. So, dot delivery, 7 runs of the over, 81 for 2 after 9 overs, Australia.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: ये मत जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
5: दसवें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर. फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए. लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने, और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया. जहां तक मुनी का सवाल है, मुनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई. गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लटने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं. टी20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती. इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का, और गेंद सीधे 6 रनों के लिए. एक
6: ये लगा आभा का छक्का.
0: ग्रेट शॉट एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस ओजिंग एंड प्लेड दैट शॉट विद कंज्यूमेट ईज. एज द डिलीवरी वॉज बोल्ड, शी वॉज एंटिसिपेटिंग, स्टेप्ड आउट, द फुटवर्क वॉज इंपॉर्टेंट, पिक्ड अप ऑन अ हाफ वॉली एंड जस्ट अबाउट टाइम्ड इट वेल ओवर द लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन रीजन.
5: बढ़िया स्ट्रोक और एक बड़ा सिक्सर. आज मैच में बहुत ज्यादा सिक्सर देखने को नहीं मिले. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा या ज्यादा से ज्यादा तीसरा छक्का होगा. क्षमा इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से. एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सेस. दसवां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर. कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइट गेंद, और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: व्हाट अ ग्रेसफुल इनसाइड आउट शॉट. संजय पिक्ड अप दैट लेंथ ब्यूटीफुली एंड प्लेड दैट विद कंज्यूमेट ईज. जस्ट स्टेप्स अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ द बॉल एंड दैट कॉन्फिडेंट लुकिंग इनसाइड आउट शॉट.
5: ऑफ स्टंप के बाहर लगातार विकेट दी है फ्लेचर ने और उसका भरपूर इस्तेमाल किया है गार्डनर ने. गार्डनर अब 9 गेंदों पर 19 रन बना चुकी हैं. एक बार फिर फ्लाइट, लगातार फ्लाइट करा रही, लेकिन अगर आप स्टंप पर फ्लाइट कराएं तो चलिए उसको रोकने में

आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल कुछ था इकलौते रन के लिए, हर गेंद पर रन देने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर के, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। चार गेंदें हुई हैं, दो गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर, 46 रन बना चुकी है मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया, एक रन लेना चाहती थी लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन, दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन दो रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 दो विकेट के नुकसान पर, 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को, इकलौता रन। और ये आखिरी गेम थी, 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: The next delivery, which is bowled short and a bit of bounce onto that one, shoulder height, and the right-handed Gardner plays it down into Joseph standing there at short fine leg, picks up a single. We end up the 11th over. Australia now 105 for the loss of 2 wickets. Mooney 55, Gardner 22.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: 12वें ओवर की अब शुरुआत हो रही है और गार्टनर 22, मूनी 55, दोनों सॉलिड तरीके से इस विकेट पर अब टिके हुए हैं। कोई ऐसा लगता नहीं कि अब मुश्किलों का दौर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुकाबला तकरीबन फाइनल में दस्तक देने के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। और इस बार इस गेंद को निकाल दिया, पैरों पर गेंद थी स्क्वायर लेग की दिशा में और जब तक गेंद वहाँ पर फील्ड होती अलेने के हाथों तोड़ करके रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्टनर 23, मूनी 55 और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ वॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदे बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहाँ पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद रखती है क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि यह मुकाबला अब उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे तो उसका असर यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
0: सर्टेनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन, 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर। And the score now reaches Nelson at 111 with that single just tucked away on the onside. And Glasgow, the fielder. And Ram Harrack giving away 6 runs of 5 deliveries. A better over from her, comparatively. But now Australia, just a question of time, winning this match. Here's the next delivery from Ram Harrack. Plays it onto the onside. Just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें

0: ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here's the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra.

0: of 126 overall by one extra run there. So Australia wins this match by 8 wickets and...
1: ये लगा आभा का चौका।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So what a great victory for the Australian side. 127 for 2 and Sanjay. If you look at the main reasons why the West Indies, with short selection, playing too far across the line, giving those dot deliveries, that prompted the Australian side to do well as far as bowling and fielding is concerned, and look at the result now.
5: बिल्कुल, एक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में ये था कि उन्होंने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था। वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा, और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
6: प्लेयर ऑफ द मैच।

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. So, जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, Australia. आज बहुत ही dominant जीत. Australia ने 8 विकेटों से West Indies को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, former India cricketer. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यू, डॉटिन, इनको स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: राइट. एंड बेथ मूनी, सिंस यू जस्ट स्पोक अबाउट हर, पुट अप एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे. 36 बॉल 61 रन्स, व्हिच इंक्लूडेड 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125, we all knew, were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favor.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So, that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you're up against a weaker opposition, it's not

0: We'll make sure we do that. Rest and recover over the next little bit, and then build up without thinking too much and playing the game over and over in our heads. I think we're just going to make the most of the week and make sure we enjoy every part of it.
1: Yep. We've deserved the rest and the sleep. Enjoy the sleep and switch the alarm off, and we'll see you on Sunday.
0: Thanks, James.
1: Well done.
2: Well, there you had it. A very happy and a very smiling Australian captain out there, Sophie Molyneux, who was all about just complimenting and applauding the team's efforts. And also for all our listeners, I would like to quickly tell you that this is indeed the 8th T20 World Cup final for the Australian women's team. That in itself is a very big achievement. And I'm also told that we have a caller with us joining us right now. Namaskar, good evening. जी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप आज ओके हाँ जी आपको बता देंगे चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं रवि आप ही के पास आते हैं कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है कहां पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है
3: देखिए ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रॉकेट साइंस नहीं है आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा उनकी फील्डिंग देखिए अपनी फील्डिंग देखिए बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का चार प्लेयर भारतीय और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी है चोट लगी हुई थी उनको तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये इतनी समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है तो ये देखिए आप बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं और जिस दिन इंडियन टीम चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पे ध्यान देगी उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब
4: टीम इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं फिटनेस पे कितना ध्यान देते थे आप
5: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता सर ने सही बोला कि T20 की वजह बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो पर ध्यान नहीं दिया जाता और फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को तो
4: नहीं भले ODI टेस्ट हो फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब
5: नहीं थी
4: आज है
5: आज T20 है तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है जो फिट है सर ने बिल्कुल सही बोला अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे अब आप देखिए कैच बनानी पड़ती कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी आपको कैच बनाना पड़ेगा विकेट लेना पड़ेगा तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा तो एफर्ट तभी मारेंगे ना जब आप फिट है और T20 इतना फास्ट गेम होता है ना उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है कहाँ पे बॉल आ रही है तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है
4: तो कोच साहब से पूछते हैं सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से
3: देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स भी कैच छूट सकती है ऐसी बात नहीं है लेकिन आप ये देखिए आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं मैं देख उनको सुना मैंने पढ़ा भी देखा भी है वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में उनके साथ ही चिपक जाती है तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है
4: हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे खोल कर सूरज की तरफ तो फर्क क्या है दोनों में
6: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं उनकी आदत है उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ऐसा नहीं है बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है फिंगर्स बाद में आती हैं आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले जो थम है वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके हमारे दोनों थम अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है और अगर आप वही चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जैसे ट्रेन किया जाता है उसी हिसाब से चलता है दूसरी चीज ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक जमाने में हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे मदन लाल मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ

0: या 70s की बात करूं, आबिद अली, करम कुसोलकर, इन लोगों के हम नाम ले सकते थे, बाकियों के नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग। स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे। आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर, और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था। इन्होंने अभी कहा कि 400-400, 500-500 कैचेस लेते हैं। अजहरुद्दीन का ज़माना ले लेते हैं 90s का, जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को। वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था, एंड ही वांटेड ऑल दोज कैचेस। और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा, कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा, मतलब ऐसे थे। इनकी ट्रेनिंग मेथड अलग होते थे, लेकिन हाँ आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है आपका, ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है। तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
1: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ? बिकॉज़ सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एक ही जीते थे 2016 का एडिशन। What does it speak of the West Indies cricket now?
0: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They are only playing T20 cricket at best. That's where their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning those big ones. So their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash-trapped, you know, association. Doesn't have that kind of money. Their sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them. They don't come here with a sponsor. They come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
2: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par. Hello. Namaskar, ji. Ji, bilkul khairiyat hai. Aap apna naam bataiye. क्या सवाल है आपका? जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता, तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
3: इंडियन टीम जैसे
1: आई टेक द क्वेश्चन, मैं रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम, जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए, जहां से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियां आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर, जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
4: देखिए, अफ्रीका का इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे, और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे 3 कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली, और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं।
2: पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली, जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं, इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने?
3: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया, बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों का हमसे और अच्छा हो गया है। तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है, तो वैसे ही फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज़ कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
2: जी बिल्कुल, और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक, ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड, आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
0: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए।

0: मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहाँ कंडीशंस में ज़्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है, इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। न्यूजीलैंड और यू नो साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है तो मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
1: ओके, रवि आपके पास आती हूँ। चलिए, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आम तौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगी?
2: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के भी लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही। अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छी तरह लॉरा जब बैटिंग करती हैं तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती हैं, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला। एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं इसके ऊपर।
3: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवा तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
4: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे ही नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज़ क्या मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस, उनको लगा T20 है बस। तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा।
1: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू।
2: एडवांटेज इंग्लैंड का, नो डाउट
1: एडवांटेज।
0: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी टीम मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन टीम की जब बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफ़ी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जरूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है
1: जी। और आशा,
4: मैंने बोला ना जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन वो जीतेगा, क्योंकि टीम दोनों में
1: नहीं दे रहे हो,
4: नहीं दूंगी
3: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
0: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परामेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफकोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
3: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
0: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win.
3: Especially after defeat with Ireland.
0: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
3: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया।
1: And on that note, thank you to all our listeners for joining in. This is me, Sakshi Mandwal, and Amit Arora saying goodbye, but also giving a heartfelt thank you to our technical team, Jayaram, Aniruddh Gupta, Nagendra Kumar Patil, Prasoon Kumar, our production team, Swati Kapoor, Tanmay Bhatt, Vidwan Vas, and our producer, Shahnawaz Khan, the team, the people, the men, and of course, all

0: all of us who bring you the shows back to back and also the commentary. Thank you so much to all our listeners for tuning in. This is Amit Arora and Sakshi Mandwal saying good night. Goodbye.
1: Player of the match. अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
2: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
3: Cricket match ka aankho dekha haal. Akashvani Delhi se relay kiye ja rahe the. FM band par ye Akashvani ka Bilaspur kendra hai. Lijiye ab suniye Vividh Bharati Prasaran Seva ke karyakram.

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha.

हैं, हमारा आज का प्रसारण यही संपन्न हुआ। कल के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।